पुरुषोत्तम दास जलोट और साथियों के स्वरों में आप सुन रहे थे भक्ति गीत। और इसी भक्ति गीत के साथ श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस।

भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं, धर्म शास्त्रों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। हर एक अवतार जिस कारण होता है, वो कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हेतु अनेक हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं जान सकता। शिवजी ने पार्वती को श्रीहरि के दो द्वारपालों जय और विजय की कथा सुनाई, जो सनकादि ब्राह्मण के शाप के कारण हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्ययाक्ष के रूप में मनुष्य योनि में पैदा हुए थे। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ तथा हिरण्ययाक्ष का वध प्रभु ने वराह का शरीर धारण करके किया, किंतु स्वयं प्रभु के द्वारा मारे जाने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मण का शाप 3 जन्मों के लिए था। कालांतर में यही दोनों रावण तथा कुंभकर्ण नामक महाबली राक्षस हुए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स A20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर हमारे श्रोता सुनेंगे पत्रों और मेल पर आधारित कार्यक्रम आप और हम। 7:20 का हमारा समय होता है लोकगीतों का और 7:35 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम सुरांजलि। 7:50 पर स्वास्थ्य चर्चा का प्रसारण होगा। सुबह 8:00 समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा और यहीं से आप सुनेंगे सुबह 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। 8:30 का हमारा समय होता है प्रादेशिक समाचार का, जो कि रिले किया जाता है आकाशवाणी रांची से। 8:45 पर हम आपके साथ होंगे फिल्म संगीत लेकर। सुबह 9:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 9:05 पर कार्यक्रम सुरंजना में आज हमारे श्रोता साथी सुनेंगे एक ही गायक को। 9:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत का। सुबह 10:00 हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 10:20 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुबह 11:00 और दोपहर 12:00 आप सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 11:05 पर कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर की प्रस्तुति होगी और दोपहर 12:05 पर आप सुनेंगे भावगीत। 12:30 पर शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया जाएगा। दोपहर के 1:00 हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। दोपहर 1:10:20 और 2:30 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। दोपहर के 2:00 मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। अपराह्न के 3:00 NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा और अपराह्न 3:30 पर सुगम संगीत प्रसारित किया जाएगा। 3:45 पर श्रोताओं आप आनंद ले सकते हैं लोकगीत का। संध्या 4:00 एवं 5:00 समाचार मुख्यांश आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया जाएगा। 4:02 पर आज आप सुनेंगे संदेश टू सोल्जर कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। संध्या 5:02 का हमारा समय होता है युवा साथियों का, आप सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी। 5:30 पर कल कारखाने कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। संध्या 6:00 हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे। संध्या 6:10 पर आप सुनते हैं झारखंड के लोकगीत। संध्या 6:30 का समय होता है कृषि जगत का। 7:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया जाएगा और यहीं से आप सुनेंगे 7:10 पर जिले में आजकल। 7:15 का हमारा समय होता है बांग्ला कार्यक्रम का। 7:45 पर आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं खेल कार्यक्रम। रात्रि 8:00 फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से, यहीं से प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 9:00 न्यूज एट नाइट और 9:15 पर स्पॉटलाइट। रात्रि 10:00 फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। रात्रि 10:30 पर आप आनंद ले सकते हैं शास्त्रीय संगीत का। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

0: श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब आइए सुनवाते हैं आपके पत्रों और मेल पर आधारित कार्यक्रम आप और हम।
4: आप और हम, आप और हम।
5: मौसम का मिजाज इन दिनों काफी बदला हुआ सा है। जहां दिन में धूप और गर्मी से इंसान झुलस रहा है, वहीं शाम के समय बारिश की बूंदा बूंदी और ठंडी हवाएं जनमानस को राहत दे रही हैं। सुबह का समय भी सुखदायक प्रतीत होता है और ऐसे खूबसूरत मौसम में रेडियो में आपका पसंदीदा कार्यक्रम आप और हम का प्रसारित होना ये बताता है कि आपका प्रेम और विश्वास आज भी रेडियो के प्रति उतना ही है। कार्यक्रम आप और हम में आपके पत्र और मेल को हम अवश्य शामिल करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सबको निमिषा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके पत्रों और मेल का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं हमारे कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार राय। राय सर, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, नमस्कार।
6: नमस्कार
5: सर। जैसा कि आज भी हमारे पास पत्र और मेल आए हुए हैं और इनमें से मैंने खास पत्र और मेल को चुना है।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
5: तो समय ना गवाते हुए लेते हैं ये
6: पहला मेल।
5: ये मेल आया हुआ प्रियंका सिंह जी के रोड बिष्टुपुर से।
6: अच्छा अच्छा।
5: लिखती हैं, रेडियो के तमाम प्रसारणकर्ताओं एवं अधिकारियों को मेरा प्रणाम।
6: भान प्रियंका सिंह को हमारी ओर से नमस्कार।
5: और उन्होंने आगे लिखा है, मैं भी एक स्टूडेंट हूं और यूथ प्रोग्राम बड़े गौर से सुनती हूं। इन दिनों यूथ कार्यक्रम में नई नई आवाजों को सुनने का मौका मिल रहा है। अपार हर्ष की अनुभूति हुई जब मैं नेशनल टॉपर शांभवी तिवारी की भेंट वार्ता सुनी। हमारे आज के युवाओं को शांभवी तिवारी से बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन में अगर किसी ऊंचाई पर पहुंचना है तो किस तरह से उसे मुकाम तक हासिल करने के लिए स्वयं को फिजूल के सोशल मीडिया से दूर रखकर अपनी पढ़ाई की दुनिया में रम जाना होता है। शांभवी तिवारी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके कार्यक्रम के जरिए मैं प्रेषित कर रही हूं। और अपने युवा साथियों को ये भी कहना चाहूंगी कि अपने स्मार्टफोन को अपने जीवन से दरकिनार कर आगे बढ़े, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद।
6: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका सिंह जी को एक बार फिर से कि आप जो है आपने मेल किया है और आपने लिखा है कि आप एक छात्र हैं और हमारे कार्यक्रमों में आप रुचि लेती हैं। और ये भी आपने लिखा है कि आप पिछले दिनों आप युवानी कार्यक्रम में, जो हमारा यूथ कार्यक्रम है, उसमें आप रुचि ले रही थी और इसीलिए आपने इस बात को गौर भी किया है कि इसमें नई आवाजें आई हैं।
5: जी हाँ।
6: तो निमिषा जी, जो पिछले दिनों हम लोगों ने जो यूथ कार्यक्रम के लिए, युवानी कार्यक्रम के लिए जो समनुदेशिति का जो पैनल तैयार किया था, तो उसमें से जो नए युवा प्रतिभाएं आई हैं, नई आवाजें हैं, उनको मौका दिया जा रहा है और वो अपनी वाणी के जरिए लोगों तक अपने प्रस्तुतिकरण की छाप छोड़ रहे हैं। बहुत जानकर अच्छा लग रहा है। आपने चर्चा की है कि जो ICSE बोर्ड की 12वीं की नेशनल टॉपर शांभवी तिवारी की भेंटवार्ता आपने सुनी, तो यूथ टाइम्स में, मतलब युवानी अंग्रेजी में, पिछले रविवार को एक कार्यक्रम मुझे ध्यान आ रहा है, भेंटवार्ता प्रसारित हुई थी। वाकई जो है, अगर हम आज के युवा जो है, ये नहीं है कि किताबी कीड़ा बने, लेकिन मोबाइल को, सोशल मीडिया को, टीवी को अगर दूर करें, अपना उसके प्रति एकदम से आसक्ति न बना लें इन माध्यमों को, और अपना अगर अध्ययन में रुचि लगाएं,
5: हाँ।
6: तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि शांभवी ने भी इस भेंटवार्ता में बार बार अभी प्रेरित किया था कि उनका मुख्य जो लक्ष्य है वो नीट एग्जाम के जरिए डॉक्टर बनने की है, सफल डॉक्टर की, ताकि समाज को अपना वो सेवा दे सके,
5: हाँ।
6: मानवता की सेवा कर सके और एक प्रेरणा स्रोत बने। तो हमारे युवा भी प्रेरणा स्रोत बने और प्रियंका सिंह जी, आप भी हमारे कार्यक्रमों को यूं ही सुनते रहें, लेकिन अध्ययन को भी अपना जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके भी करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
5: प्रियंका सिंह जी के इस मेल के बाद अब बारी आती है एक चिट्ठी की।
6: बिल्कुल।
5: और ये चिट्ठी आई हुई है रंजीत साहू जी की सीनी भिलाईडी से।
6: अच्छा अच्छा, क्या लिखते हैं रंजीत जी?
5: रंजीत जी लिखते हैं, रेडियो के सभी अधिकारियों को मेरा जोहार।
6: भाई रंजीत साहू जी को भी सपरिवार हमारी ओर से नमस्कार, जोहार।
5: आगे इन्होंने लिखा है, मैं आपके रेडियो को काफी वर्षों से सुन रहा हूं, लेकिन अब मेरे पास रेडियो सेट नहीं है और मैं अपने फोन पर ही ऐप के माध्यम से कई स्टेशनों को सुनता हूँ। यूँ तो सारे स्टेशन क्लियर सुनाई देते हैं, लेकिन विविध भारती का 100.8 मेगाहर्ट्ज़ में कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ता है। ये मेरे फोन की खराबी है या आपके स्टेशन की? कृपया इसकी जानकारी मुझे साझा करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा।
6: भाई रंजीत साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पत्र लिखने के लिए, और आप लिख रहे हैं कि काफी पुराने श्रोता हैं, बहुत अच्छी बात है जानकर। हमें काफी अच्छा लग रहा है कि आप हमारे काफी पुराने और सुधी श्रोता हैं, कि आपने पत्र लिखने की भी चेष्टा की है, और उसके लिए भी आप उत्साह के मतलब दिखाता है आपका उत्साह हमारे प्रति, हमारे केंद्र के प्रति। और निमिषा जी, तकनीक का जो बदलाव होता है वो भी ये परिलक्षित कर रहे हैं कि पहले रेडियो सेट पर सुनते थे, अब इनके पास रेडियो सेट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है कई केंद्रों को सुन पा रहे हैं, मतलब ऐप के माध्यम से, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। और जो है बहुत स्टेशन इन्होंने लिखा है क्लियर सुनाई देते हैं, लेकिन उन्होंने एक जो है एक समस्या का जिक्र किया है। निश्चित रूप से हम लोग अपने जो तकनीकी हमारे जो यहाँ केंद्र पे प्रभारी हैं उनसे हम लोग कार्यक्रम बैठक के में चर्चा करेंगे। और जहाँ तक इन्होंने लिखा है कि 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर मतलब विविध भारती सेवा की स्ट्रीमिंग में कुछ समस्या हो रही है, अब इनको ये लग रहा है कि इनके फोन की भी खराबी है या हमारे स्ट्रीमिंग में खराबी है, तो इन सारी बातों को हम लोग निश्चित रूप से पता लगाएंगे अपने तकनीकी जो हमारे प्रभारी हैं उन सबसे बातचीत करके और इसका अध्ययन करके। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रंजीत साहू जी, आप हमारे कार्यक्रमों से यूं ही रुचि बनाए रखें और बीच बीच में अपने विचारों को भी साझा करते रहें।
5: रंजीत साहू जी के इस पत्र के बाद फिर से ये रहा मेरे हाथ में बिरसा नगर जमशेदपुर से कस्तूरी लाल दास जी का ये मेल। अच्छा। कस्तूरी जी लिखती हैं, आकाशवाणी के तमाम प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा नमस्कार।
6: भान कस्तूरी जी को भी हमारी ओर से सब परिवार नमस्कार।
5: इन्होंने अपने मेल में आगे जिक्र किया है, मैं आकाशवाणी जमशेदपुर की नियमित श्रोता हूँ और आपके केंद्र से प्रसारित हर कार्यक्रम को सुनती हूँ। 7 मई को थैलेसीमिया दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम कल कारखाने में एक भेंट वार्ता प्रसारित की गई थी। विजय लक्ष्मी दास जी की ये जानकारी काफी सराहनीय है, क्योंकि आज समाज में थैलेसीमिया से ग्रसित कई लोग हैं जिनको जानकारी का अभाव है। मेरी आपसे एक गुजारिश होगी कि आकाशवाणी जमशेदपुर से लाइव फोन इन कार्यक्रम में इस टॉपिक को लिया जाए तो कई लोग अपने सवालों का जवाब तुरंत जान पाएंगे। मेरे इस बात पर विचार करने की कृपा करें, धन्यवाद।
6: बहुत बहुत धन्यवाद बहन कस्तूरी जी, आपने लिखा है कि आप भी हमारे केंद्र की नियमित श्रोता हैं और आप हमारे केंद्र से प्रसारित लगभग हर एक कार्यक्रम को सुनती हैं। तो थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर आप जो है कल कारखाने में भेंट वार्ता आपने सुना। थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर जो कल कारखाने में भेंटवार्ता प्रसारित हो रही थी, जो भेंटवार्ता थी विजय लक्ष्मी दास की थी
5: जी हाँ।
6: और निश्चित रूप से आपको अच्छी लगी और आप इस पे जागरूक भी आप हैं कि कैसे जो है बहुत ही गंभीर विषय से बचा जाए और इसके लिए आवश्यक जो है प्रिकॉशंस हैं, जो सावधानियां हैं वो बरती जाए। आगे आपने विचार प्रकट किया है कि फोन इन कार्यक्रम में, मतलब हेलो डॉक्टर में इन्होंने विचार प्रकट किया, निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे। लेकिन चूंकि कस्तूरी बहन आपको हम लोग बता दें, पहले भी इस बात का जिक्र करते रहे हम लोग इसी कार्यक्रम के माध्यम से कि हेलो डॉक्टर कार्यक्रम की जो फ्रीक्वेंसी है या उसमें डॉक्टरों की जो सहभागिता है वो उनकी उपलब्धता पर निर्भर है कि वो हमारा जो निर्दिष्ट समय है सायंकाल का जिस समय प्रसारित होता है रात्रि 8 से 8:30 बजे उस समय उनको उपलब्ध होना होगा और उसके पूर्व भी समय देना होगा पहले स्टूडियो पहुंच के कुछ औपचारिकताओं के लिए।

0: टेस्टिंग के लिए, तो उस समय बहुत सारे हमारे जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं नहीं उपलब्ध होते हैं। और साथ ही साथ हमारा हमेशा प्रयास होता है कि हर एक विषय को कवर किया जाए। विषय भी ऐसे होते हैं बहन कस्तूरी जी कि उनमें आधे घंटे के लिए सभी श्रोताओं की रुचि होनी चाहिए,
1: हाँ।
0: जो आम चिकित्सकीय विषय होने चाहिए। और थैलेसीमिया चूंकि बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन हो सकता है कि इसमें फोन की जो इनकमिंग हो वो थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हम लोग निश्चित रूप से इससे जो संबंधित चिकित्सक है कार्यक्रम बैठक में हम लोग चर्चा करके इससे जो संबंधित कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी हैं उनसे हम लोग इसको एक्सप्लोर करने की चेष्टा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कस्तूरी लाल दास जी के इस मेल के साथ ही हमें कार्यक्रम से विराम लेना होगा, तो चलते चलते हम अपने श्रोताओं को कार्यक्रम का पता और मेल आईडी बता देते हैं। जिन श्रोताओं को पत्र लिखना है वो हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कार्यक्रम आप और हम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी जमशेदपुर, पिन है 831013। और अगर आप मेल करते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है airjsrcbs@gmail.com। पत्र लिखे, मेल करें। फिलहाल मुझे और राय सर को इस साप्ताहिक कार्यक्रम आप और हम से अनुमति दें।
0: नमस्कार।
2: आप और हम, आप और हम।
1: अभी आप सुन रहे थे आपके पत्रों और मेल पर आधारित कार्यक्रम आप और हम। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
5: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुनेंगे रमेश कुमार उपाध्याय का गाया भोजपुरी गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रमेश कुमार उपाध्याय का गाया भोजपुरी गीत, और इसी के साथ हमारा आज का लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7:35 हो रहे हैं। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरांजलि। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आधुनिक गान सबिता चौधरी सिंह।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। अब आइए सुनवाते हैं स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा के आज के इस अंक में हमारे श्रोता सुनेंगे भेंट वार्ता, पीठ दर्द कैसे पाएं निजात। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जाहिद, जिनसे बातें कर रहे हैं राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, आमतौर पर लोग पीठ दर्द की शिकायत करते हैं। खासकर युवाओं में पीठ दर्द की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। पीठ दर्द से हम कैसे बचे और फिजियोथेरेपी का सहारा लेकर हम कैसे इसे निजात पा सकते हैं, स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में बातें इसी विषय पर। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर जाहिद। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीठ दर्द जो होता है उसमें फिजियोथेरेपी किस तरह से फायदा पहुंचाता है।
2: पीठ दर्द जो है पहले के ज़माने में ओल्ड लोगों को हुआ करता था ज़्यादातर, मगर अभी जो हमारा लाइफ स्टाइल है इसमें यंग पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं जो कमर दर्द की तकलीफ बताते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें ये जानना चाहेंगे आप कि पीठ दर्द हो क्यों रहा है, रीज़न क्या है। तो अभी का जो दौर है जिसमें जो ज़्यादातर जो बैठने का जो काम होता है, कंप्यूटर के सामने बैठे हुए 2 घंटा 4 घंटा बैठे हुए हैं कंटिन्यू, तो ये भी एक रीज़न होता है कि आपका बैठने का पोस्चर सही नहीं है और आप काफ़ी देर तक कंटिन्यू बैठे हुए एक जगह पे, और जिसकी वजह से आपका बैक जो जॉइंट है, आपका कमर का जॉइंट जो है वो स्टिफ हो जाता है और समटाइम से धीरे धीरे मसल स्पॉन्स डेवलप कर जाता है जिसकी वजह से कमर दर्द होता है। और लेडीज़ में जो बहुत ही हाई हील का जो स्लीपर ये लोग पहन के चलते हैं सैंडल, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। फिर जो जॉब कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ उठाने का जॉब है और ट्विस्टिंग है, मूविंग है, ये सब इन्वॉल्व होता है जॉब में उनके, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होता है बैक पेन डेवलप कर जाने का। तो इससे थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने के लिए आपको चाहिए कि आप जब सिटिंग पोजीशन, आप कहीं पे भी कुर्सी में बैठे हैं तो आपका सिटिंग पोजीशन जो बिल्कुल सही हो वो या तो आप एक्सट्रीम बैक होकर बैठिए या एकदम एज पे होकर बैठिए, बीच में नहीं बैठी करके आपके कमर और कुर्सी के बीच में गैप हो जाए।
1: सही पोस्चर बना के
2: सही पोस्चर बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो इस खासकर कमर के लिए जो इस फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे वो आपको बेड पे उल्टा लेट के एक पैर को सीधा उठाना, उठा के 5 तक गिनिए, फिर उसको नीचे कीजिए, फिर दूसरा पैर उठाइए 5 तक गिनिए, फिर उसको नीचे लाइए, फिर इसी तरह दोनों पैर के एक साथ उठा के 5 तक गिनिए आप और फिर उसको नीचे लाइए। फिर उसके बाद आप उल्टा ही लेटे लेटे आप दोनों हाथ को सामने उठाते हैं और अपर बॉडी को कमर तक को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखते हैं, 5 सेकंड गिनते हैं, 5 से 1 to 5, फिर उसके बाद इसको नीचे लाते हैं, इसको रिपीट करते हैं। ये तीनों को अगर आप रिपीट करते हैं तो इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। फिर इसी तरह आप सीधा हो जाते हैं, सीधा होकर एक पैर को सीधा उठाते हैं स्ट्रेट एकदम, जिसमें नी मुड़ना नहीं चाहिए, सीधा उठाते हैं, उसी तरह 5 सेकंड रोकते हैं उसको आप, और फिर उसके बाद उसको नीचे लाते हैं, बारी बारी दोनों पैर से करते हैं। फिर उसके बाद आप नी को बेंड करते हैं और दोनों हाथ से इसको पकड़ के अपने सीने की तरफ लाते हैं, सीने की तरफ ला के थोड़ा सा गर्दन उठाते हैं और उसको वहाँ पे दबा के रखते हैं 5 सेकंड तक, फिर उसको धीरे से रिलीज कर देते हैं। फिर इसी तरह रिपीट करते हैं आप दूसरे पैर में, उसको भी दबा के रखते हैं सीने की तरफ, थोड़ा सा गर्दन उठाते हैं, 1 to 5 काउंट करते हैं, फिर पैर को सीधा कर लेते हैं। इसके बाद आप दोनों पैर एक साथ भी कर सकते हैं, दोनों पैर के एक साथ उठाते हैं और दोनों को सीने पर लगा के 5 सेकंड रोकते हैं, सीधे कर लेते हैं। ये सारे जो है एक्सरसाइज को आप 25-30 बार रोजाना अगर रिपीट करते हैं सुबह शाम करके, तो उम्मीद है कि आपका कमर दर्द का प्रॉब्लम बहुत जल्द खत्म हो जाए।
1: तो इस तरह का एक्सरसाइज कोई आपके सुनने से या हमारे रेडियो के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं वो कर सकते हैं या फिर किसी का सलाह, किसी फिजियोथेरेपी की सलाह लेकर ही उसे करनी चाहिए?
2: एक बार फिजियोथेरेपी से सलाह लेना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि नर्व कंप्रेशन होता है तो उसमें 1-2 एक्सरसाइज होता है मना होता है। अच्छा। जैसे आपके सामने से पैर उठाने वाला जो होता है, क्योंकि अगर आप ऐसे पैर उठाने का तो उसमें जो स्टेना जो अंदर नर्व कंप्रेशन होता है उससे ज्यादा और होने का चांसेस हो जाता है। एक बार आप फिजियोथेरेपी कंसल्ट कर लेते हैं अगर, तो वो आपको बता दे कि नहीं ये आपके लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इससे आपको फायदा होगा।
1: तो श्रोताओं, आपने सुना है कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से जो एक्सरसाइज बताया जाता है उस

0: एक्सरसाइज का सहारा लेके हम बहुत हद तक पीठ दर्द और कमर दर्द की समस्या से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, पीठ दर्द कैसे पाएं निजात। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर जाहिद, जिनसे बातें कर रहे थे राजेश कुमार। इसी के साथ हमारा आज का स्वास्थ्य चर्चा का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424242।
5: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
7: एक आवश्यक सूचना, नीतीश कुमार सिंह उपायुक्त सरायकेला खरसवां समस्त जिले वासियों से अनुरोध करते हैं कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुँचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता ही प्राथमिकता है। जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजनाओं के निर्माण के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने की अब आपकी बारी है। सूचना समाप्त हुई।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: The UAE is an important partner.
4: UAE हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल UAE भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्ति करता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। LNG के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और UAE की आबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
3: MMTPA LNG to India।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
5: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिविंग संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश डोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
6: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों के भी लाभ पहुँचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
9: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
10: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेकिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
11: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे टी20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
12: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क 6 से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2,441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ते की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कोयला राज्य मंत्री ने राज्य के सहयोग को अवस्थापन समाधान के लिए बताया जरूरी। झरिया पुनर्वास योजना के तहत प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। निजी अस्पतालों की मनमानी और इलाज में लापरवाही पर राज्य सरकार सख्त। चतरा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा सदर अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की होगी तैनाती। रांची की बेटी भव्या रंजन बनी CBSE 12वीं आर्ट्स की नेशनल टॉपर। 500 में से 499 अंक पाकर देश में लहराया परचम। राज्यपाल ने सफल विद्यार्थियों को दी बधाई। राज्य में आंधी बारिश का सिलसिला जारी। 20 मई तक पूरे राज्य में मौसम खराब रहने की चेतावनी। 15 और 16 मई को कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और झारखंड T20 लीग की आधिकारिक ट्रॉफी का रांची में आज होगा अनावरण। समारोह में भारतीय स्टार क्रिकेटर ईशान किशन विशेष रूप से होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बेलगढ़िया में कहा कि झारखंड सरकार के सहयोग के बिना वस्थापन और भूधसान समस्या का समाधान असंभव है। उन्होंने प्रभावित लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की अपील करते हुए बताया कि झरिया मास्टर प्लान 2.0 के तहत पुनर्वासित परिवारों को सुविधाएं, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
1: झारखंड सरकार सहयोग नहीं करेगा तब तक विस्थापन की समस्या दूर नहीं होने वाला है। जहां विस्थापन का विषय है नहीं, वहां गैस का रिसाव हो रहा है, भूधसान हो रहा है। भारत सरकार के द्वारा झरिया मास्टर प्लान के तहत घर और व्यवसाय का रास्ता, जैसे स्किल से जोड़ देना और छोटे छोटे कुटीर उद्योग से जोड़ देना, बच्चे लोगों की पढ़ाई के लिए यहाँ ई रिक्शा ई बस की व्यवस्था करना।
0: वैश्विक संकट पर बोलते हुए उन्होंने पेट्रोल डीजल बचाने की प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन किया और सनातन विरोधी बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी।
2: डीजल पेट्रोल का कुआं नहीं है, यहाँ नेचुरल गैस की उपलब्धता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है उनकी स्वीकृति में मात्र 2 ई रिक्शा ई मोटर बाइक लगाया गया है। अब सब लोगों से अपील किया है कि घर से बैठ के काम करिए, ई बस चल रहा है उससे जाइए।
0: चतरा पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने निजी अस्पताल का उद्घाटन करते हुए कहा कि बेहतर चिकित्सा के लिए सरकार निजी अस्पतालों को सहयोग करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि मरीजों से अधिक पैसे लेने या इलाज में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री ने चतरा सदर अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर और एम्बुलेंस बढ़ाने की घोषणा की।
3: मेरी मंशा यही है, हर व्यक्ति तक हम स्वास्थ्य की रक्षा करें। इसी कड़ी में हमने कहा है कि इस राज्य में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं उनको जो भी सहायता चाहिए मैं दूंगा। सरकारी तो हम खोल ही रहे हैं, प्राइवेट को भी अच्छा करना चाह रहा। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है केवल नाम का नहीं होगा।
0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राज्य अभियान निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने सरायकेला में निजी अस्पतालों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी निजी अस्पतालों, क्लिनिकों और दवा दुकानों का हेल्थ प्रोफेशनल और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री से जुड़ना अनिवार्य है। निर्देशों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस डिजिटल मिशन से मरीजों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रहेगा और इलाज में पारदर्शिता आएगी। राज्य में बिना नक्शा पास बने अवैध भवनों को वैध करने के लिए आज बड़ी राहत मिलने जा रही है। झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली 2026 के तहत आज सुबह 11 बजे प्रोजेक्ट भवन में ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। भाजपा ने राज्य सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि सरकार 3,200 रुपए MSP लागू करने और ओलावृष्टि प्रभावितों को मुआवजा देने में विफल रही है। इसके विरोध में भाजपा 15 से 20 मई तक सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना देगी।
4: पूरे राज्य में आने वाले सभी प्रखंड मुख्यालयों में 15 से 20 मई तक धरना देकर के सरकार को जगाने का काम करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि सरकार पदाधिकारियों को भेज करके किसान के एक खेत टाण का सर्वे कराए, जो फसल की बर्बादी हुई है उसका मुआवजा सही आकलन करके सही राशि समय पर देने का काम करे।
0: रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने प्री एसआईआर कार्यों की समीक्षा बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले बीएलओ पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में घर घर सत्यापन और स्टिकर लगाने के कार्य में तेजी लाने को कहा। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और मृत व स्थानांतरित मतदाताओं के नाम नियमानुसार हटाए जाएं। पारदर्शिता के लिए पंचायत भवनों में वर्ष 2003 की मतदाता सूची भी प्रकाशित की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची की बेटी भव्या रंजन ने CBSE 12वीं आर्ट्स में देश भर में पहला स्थान प्राप्त कर राज्य का मान बढ़ाया है। भव्या ने 500 में से 499 अंक हासिल कर नेशनल टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। अपनी सफलता पर खुशी जताते हुए उन्होंने बताया कि उनका एकमात्र अंक अंग्रेजी विषय में कटा है।
5: इकोनॉमिक्स में एक मार्क्स कटा, ध्यान तो सब में इक्वली था। उम्मीद थी कि सिटी रैंक या स्टेट रैंक आ जाए, लेकिन नेशनल का नहीं सोचे थे। 11 मई से लेकर अभी तक वेट चल रहा था हम लोग का कि कब आएगा रिजल्ट। जब आया तो काफी खुश हुए।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने CBSE की 12वीं परीक्षा में सफल सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह शानदार सफलता विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। राज्यपाल ने सभी सफल छात्र छात्राओं के उज्जवल और समृद्ध भविष्य की कामना की है। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अमन कुमार के निर्देश पर बीती रात अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी छापेमारी अभियान चलाया गया। जिले में गठित 43 टीमों ने ड्रग्स के कारोबार और सेवन से लिप्त लोगों के 100 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। इस कार्रवाई के दौरान 77 संदिग्धों को हिरासत में लेकर PR बॉन्ड पर छोड़ा गया, जबकि 2 आरोपियों को 32 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल दोपहर और रात को तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई, जिससे रांची में कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। मौसम विभाग ने संताल परगना प्रमंडल में कल से 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, वज्रपात, बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 16 मई को रांची समेत 15 जिलों के लिए ऐसा ही ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी 20 मई तक पूरे राज्य में मौसम का मिजाज बदला रहेगा और इस दौरान तेज हवाओं के साथ वज्रपात और बारिश की प्रबल संभावना है। रांची में आज झारखंड राज्य क्रिकेट संघ द्वारा झारखंड T20 लीग 2026 की आधिकारिक ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा। इस विशेष समारोह में राज्य में विश्व स्तरीय क्रिकेट मंच विकसित करने की रूपरेखा पेश होगी। कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने CBSE 12वीं के नतीजे घोषित होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, रांची की भव्या आर्ट्स में नेशनल टॉपर। प्रभात खबर ने लिखा है, अदिति 5वें दिन भी लापता, नाले में मिले अवशेषों की होगी DNA जांच। हिंदुस्तान के शब्द हैं, मैया और सर्वजन पेंशन को 10,000 करोड़ जारी। दैनिक जागरण लिखता है, नीट पेपर लीक मामले में 5 गिरफ्तार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोयला राज्य मंत्री ने राज्य के सहयोग को अवस्थापन समाधान के लिए बताया जरूरी। झरिया पुनर्वास योजना के तहत प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। निजी अस्पतालों की मनमानी और इलाज में लापरवाही पर राज्य सरकार सख्त। चतरा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सदर अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की होगी तैनाती। रांची की बेटी भव्या रंजन बनी CBSE 12वीं आर्ट्स की नेशनल टॉपर। 500 में से 499 अंक पाकर देश में लहराया परचम। राज्यपाल ने सफल विद्यार्थियों को दी बधाई। राज्य में आंधी बारिश का सिलसिला जारी, 20 मई तक पूरे राज्य में मौसम खराब रहने की चेतावनी। 15 और 16 मई को कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और झारखंड T20 लीग की आधिकारिक ट्रॉफी का रांची में आज होगा अनावरण। समारोह में भारतीय स्टार क्रिकेटर ईशान किशन विशेष रूप से होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स, और साथ ही FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। और प्रातःकालीन प्रसारण के साथ मैं हूँ आभा।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में हम हाजिर होते हैं फिल्म संगीत लेकर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर। कहते हैं कि भगवान ने हम सबको एक कोरा कागज देकर भेजा था, लेकिन हम सब ने उस पर अपनी अपनी धुनें बिखेर दी। किसी के ज़िंदगी में शास्त्रीय संगीत की संजीदगी है तो किसी के ज़िंदगी में रॉक म्यूजिक का जोश। और आज सुबह की रागनी में हम बात करेंगे आपकी ज़िंदगी की रागनी की।

ये गीत आपने सुना जाग उठा इंसान फिल्म से। आवाज़ें आशा भोसले और किशोर कुमार की थी, शब्दकार थे इंदिवर और संगीतकार थे राजेश रोशन। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, मेरा गांव मेरा देश फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

मेरा गांव मेरा देश। आप सुन रहे थे इस फिल्म का गाना, और इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यही ख़त्म होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
2: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य हो गया है। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ये जानकारी दी। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ, अमरीका और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश में बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में कल 60 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। और आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में हम हाजिर होते हैं कार्यक्रम सुरंजना लेकर।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान,
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
3: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
3: दिन के 11:05 से 12 तक
2: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
1: नमस्कार जमशेदपुर।
4: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 MHz पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 से 12:30 के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
5: डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
5: हेलो डॉक्टर,
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
5: हेलो डॉक्टर।
6: जलवायु और समानता, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में असमानता को और बढ़ाता है। कोई व्यक्ति कितना प्रभावित होगा यह उसकी आय, लिंग, उम्र, शिक्षा और सेहत पर निर्भर करता है। अमीर देश और अमीर लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित रख पाते हैं, जबकि गरीब लोग जो सबसे कम प्रदूषण करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। देशों के अंदर भी सामाजिक आवास, स्वास्थ्य सेवा और आपदा योजना जैसे कदम जरूरतमंदों की रक्षा करते हैं। दुनिया में असमानता को बढ़ाने से रोकने के लिए उचित धन सहायता और संसाधनों का

का सही बंटवारा बहुत मायने रखता है। यहाँ एक रोचक जानकारी है, दुनिया की सबसे अमीर 1% आबादी के पास दुनिया की 43%

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरंजना। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सुरंजना में आप सुनेंगे आतिफ असलम के गाए गाने।

आप सुन रहे थे आतिफ असलम का गाया फिल्म रुस्तम का ये गीत, मनोज मुंतशिर की रचना थी, धुन आर्को का था। अब आइए सुनवाते हैं अगला गाना। ये गीत हमने लिया है फिल्म टाइगर जिंदा है से। संगीत निर्देशन विशाल शेखर का है और इस गीत को रचा है इरशाद कामिल ने।

आज के कार्यक्रम सुरंजना में हमारे श्रोता सुन रहे हैं आतिफ असलम को। अब आइए सुनवाते हैं अगला गाना। मनोज मुंतशिर का ये रचना है और धुन हिमेश रेशमिया का है। ये गीत हम आप तक लेकर आ रहे हैं फिल्म जेनियस से।

और अब लीजिए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म से। रोचक कोहली ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है और इस गीत को रचा है मनोज मुंतशिर ने।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सुरंजना में आप सुन रहे थे एक ही गायक आतिफ असलम को। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर

0: दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 870-001-4242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनेंगे राग अहिर भैरव पर आधारित वायलिन वादन पंडित विष्णु गोविंद जोगसिंह।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राग अहिर भैरव पर आधारित वायलिन वादन पंडित विष्णु गोविंद जोग से। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता

0: करेंगे एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
2: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिविंग संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ये जानकारी दी। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपये और तिल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी है। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस नौसेना की संचालन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की भी समीक्षा की। नौसेना प्रमुख ने बंगाल की खाड़ी में पूर्वी बेड़े की तैयारियों का भी जायजा लिया। आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक है। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। उत्तर प्रदेश में बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में कल 60 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में आज बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत पेचिंग में जारी। और रूस ने शांति वार्ता के बीच यूक्रेन पर 800 ड्रोन दागे। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले वैश्विक नेता नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन नेताओं में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची, थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सिहासक फुआंग केटकेओ, क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज परिला और वियतनाम के उप विदेश मंत्री ग्वेन मिन हेंग शामिल हैं। इसके अलावा मलेशिया के विदेश मंत्री दातो सेरी उतामा, मोहम्मद बिन हाजी हसन और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में मालदीव की विदेश मंत्री इरुथिशम आदम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत और मालदीव के बीच मजबूत और विशेष साझेदारी की पुष्टि की। इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बैठक में भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को तेज करने, द्विपक्षीय निवेश संधि को आगे बढ़ाने और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार भुगतान को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने पर्यटन, डिजिटल भुगतान और व्यापारिक सहयोग को और मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का 4th सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। LNG के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विश्व दर्पण समाचार के लिए चाहत सिंह।
0: सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ये जानकारी दी। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ और अमरीका को CXL तथा TRQ कोटा, अग्रिम प्राधिकरण योजना और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेचिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ शिखर वार्ता शुरू कर दी है। इस महत्वपूर्ण बैठक के आरंभ में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे का सहयोगी होना चाहिए, प्रतिद्वंदी नहीं। श्री जिनफिंग ने आशा व्यक्त की कि अमरीकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत से आपसी मतभेद दूर होंगे और दोनों देशों के संबंध इस वर्ष नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। श्री ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति को महान नेता बताया। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक बेहतर होंगे।
4: I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. It's, I can say in the United States, it's people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
0: इससे पहले पेचिंग में श्री ट्रंप का शानदार स्वागत किया गया। श्री ट्रंप दो दिन की चीन यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे। इस यात्रा का मुख्य एजेंडा केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कई बड़े कारोबारी और तकनीकी कंपनियों के प्रमुख भी चीन गए हैं। इनमें एलन मस्क, टिम कुक, लैरी फिंक और जेनसन हुआंग शामिल हैं। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेजगेट भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये उनकी पहली चीन यात्रा है। इससे पहले भी वर्ष 2017 में आधिकारिक दौरे पर चीन गए थे। रूस ने कल यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। इसका मुख्य निशाना नेटो सीमाओं के पास पश्चिमी इलाकों का महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा था।
5: इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और अनेक घायल हो गए। यूक्रेन ने बताया कि रूस ने करीब 800 ड्रोन दागे और बाद में मिसाइल हमले भी किए। सोशल मीडिया पोस्ट में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस हमले का समय कोई इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस ने यूक्रेन पर ऐसे समय बड़ा हमला किया जब अमरीकी राष्ट्रपति चीन के दौरे पर हैं। रेलवे के बुनियादी ढांचे को 23 बार निशाना बनाया गया, विशेष रूप से प्रोकोवस्क और हुलियापोइल के पास। पूर्वी मोर्चे पर भी भारी लड़ाई की खबरें हैं। अपनी सीमा के पास इन हमलों को देखते हुए पोलैंड ने एहतियात के तौर पर अपने लड़ाकू विमानों को तुरंत रवाना किया। स्लोवाकिया ने सुरक्षा कारणों से यूक्रेन के साथ अपनी कुछ सीमा चौकियां समय के लिए बंद कर दी। इस बीच हंगरी ने हमलों की कड़ी निंदा की और रूस के राजदूत को तलब किया। ज़ेलेंस्की ने हंगरी की इस प्रतिक्रिया की तारीफ की। ये हमला रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन की युद्ध विराम संधि के खत्म होने के ठीक बाद हुआ है। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
0: इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ जारी युद्ध के दौरान संयुक्त अरब अमीरात का गुप्त दौरा किया और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। नेतन्याहू के कार्यालय ने इसकी पुष्टि करते हुए बयान जारी किया है और कहा है कि इस मुलाकात से इसराइल और यूएई के संबंधों में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। हालांकि इस प्रगति से जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। उधर संयुक्त अरब अमीरात ने इसराइल के प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़ी खबरों का खंडन किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने कहा है कि भारत को ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े सभी समझौते पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करेगा कि बाहरी और अनुचित प्रतिस्पर्धा से दोनों देशों के समझौतों पर कोई असर न पड़े। सर्गेई लैवरोव ने कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भारत रूस सहयोग की प्रमुख परियोजना बताया। उन्होंने कहा कि संयंत्र की नई इकाइयों के निर्माण का काम जारी है। रूस भारत को गैस, तेल और कोयले की आपूर्ति भी जारी रखेगा। नेपाल की संसद में भारत और नेपाल के बीच आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता समझौते पर चर्चा जारी है। नेपाल की कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री सोभिता गौतम ने इस समझौते को संसद में चर्चा के लिए पेश किया। प्रतिनिधि सभा से मंजूरी मिलने के बाद ये समझौता लागू हो जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की बातचीत पेचिंग में जारी और रूस ने शांति वार्ता के बीच यूक्रेन पर 800 ड्रोन दागे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विश्व दर्पण। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में हम हाजिर होते हैं फिल्म संगीत लेकर।

और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मिस सीमा
4: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों, लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
4: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा,
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: सुनो ना।
9: हाँ?
8: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
9: तो रोका किसने है? हाँ?
8: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
9: मुझसे?
8: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
9: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
8: पर उससे मेरा क्या फायदा?
9: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
8: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
9: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
8: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ, 870-001-4242 पर।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
10: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
10: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
11: हेलो डॉक्टर,
12: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
11: हेलो डॉक्टर,

0: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर। विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर,
1: प्रिय जिलावासियों जोहार। मैं नीतीश कुमार सिंह, उपायुक्त सरायकेला खरसावां, समस्त जिलेवासियों से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब आपकी बारी। धन्यवाद।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर। गीतों भरे सफर में स्वागत है आपका। करते हैं कार्यक्रम का आगाज, सुनवाते हैं रजिया सुल्तान फिल्म से ये एक नगमा। नगमा निगार हैं जानेशार अख्तर, मौसिकी खयाम की है, आवाज़ लता मंगेशकर की है।

ये गीत आपने सुना रजिया सुल्तान फिल्म से। लता मंगेशकर के गाए इस गीत को रचा था जानिशार अख्तर ने, संगीत खयाम का था। श्रोताओं अब आइए सुनवाते हैं अगला गाना फिल्म राजपूत से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आहिस्ता आहिस्ता आपने सुना इस फिल्म का गाना सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में। शब्दकार थे नक्श लालपुरी और संगीतकार थे खयाम। और अब लीजिए अगला गाना सुनवाते हैं सन्नी फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन राहुल देव बर्मन का है।

0: प्रिय जिला वासियों जोहार, मैं नीतीश कुमार सिंह उपायुक्त सरायकेला खरसावां समस्त जिले वासियों से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब आपकी बारी। धन्यवाद।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

आंगन की कली आप सुन रहे थे इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ों में। शैलेंद्र के रचे इस गीत को संगीतबद्ध किया था बप्पी लहरी ने। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम के आखिर में ये गाना फिल्म बॉर्डर से। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, शब्दकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: श्रोताओं, फिल्म बॉर्डर के इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं पूरा होता है।
1: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है मजबूती, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता पहले और जन केंद्रित दृष्टिकोण से मिली है। ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो वियरा, रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची सहित कई देशों के विदेश मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। बैठक के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार

0: विमर्श किया जाएगा। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीकी कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि चौथे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के साथ 29 से 31 मई को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी को लेकर वे काफी उत्सुक हैं। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
1: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर राज्य के विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्य वर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 450 अंक बढ़कर 75,059 पर और निफ्टी 169 अंक के वृद्धि के साथ 23,582 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:05 रहे हैं। कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर हमारे श्रोता सुनेंगे बस थोड़ी देर में।
1: प्रिय जिला वासियों जोहार, मैं नीतीश कुमार सिंह उपायुक्त सरायकेला खरसावां समस्त जिले वासियों से अनुरोध करता हूँ कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब आपकी बात। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

0: नमस्कार जमशेदपुर।
1: कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर के साथ आज मैं हूं अनिमा। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार, बल्कि प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत आज एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार जंगल के पशुओं और पक्षियों में किसी बात को लेकर अनबन हो गई और युद्ध छिड़ गया दोनों के बीच। पशुओं की लंबी चौड़ी सेना थी, जिसमें राजा शेर के अतिरिक्त लोमड़ी, भेड़िया, भालू, जिराफ, सियार, खरगोश समेत कई अन्य पशु भी शामिल थे। इधर पक्षियों की सेना भी कुछ कम नहीं थी, उसमें चील, गिद्ध, कौवा, कबूतर, मैना, तोता सहित कई पक्षी सम्मिलित थे। जंगल में एक चमगादड़ भी था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी सेना में सम्मिलित हो, पशुओं के कि पक्षियों के। जब पक्षी उसे आमंत्रित करने आए तो उसने कहा, चमगादड़ ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूँ, पंख हटा दिया जाए तो मैं हूबहू चूहे के समान दिखता हूँ, तो मैं तो पशु हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। उधर जब पशुओं की मंडली आई चमगादड़ के पास तो उन्हें चमगादड़ बोला कि तुम्हें मेरे पंख नहीं दिखाई देते तो क्या, मैं तो पक्षी हूँ, मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूँ। इसी तरह वो ना पशुओं के साथ गया, नहीं पक्षियों के साथ। उसके कुछ दिनों बाद पशुओं और पक्षियों में मित्रता हो गई, सभी आनंद मनाने लगे, लेकिन चमगादड़ को किसी ने भी अपने उत्सव में आनंद में सम्मिलित करना जरूरी नहीं समझा। श्रोता, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जरूरत पड़ने पर दूसरों का साथ अवश्य दें, स्वार्थी का कोई भी मित्र नहीं होता, है ना।

अभी आपने सुना तकदीर फिल्म का ये प्यारा सा गाना, लता मंगेशकर और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत।

श्रोताओं, हमें बताया गया है कि एक निश्चित उम्र के बाद मस्तिष्क का विकास जो है वो रुक जाता है, लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस ने इस धारणा को बदल दिया है। आज हम जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क जीवन भर परिवर्तनशील रहता है। मस्तिष्क अनुभवों, विचारों, भावनाओं और अभ्यास के अनुसार स्वयं को ढाल सकता है। इस क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। सीखना, स्मृतियां बनाना, भावनात्मक परिपक्वता, आदतों का निर्माण और यहाँ तक कि चोट या आघात के बाद रिहैब, ये सब न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण ही संभव है। जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं, नियमित अभ्यास करते हैं या किसी विचार या कार्य को बार बार दोहराते हैं तो संबंधित न्यूरॉन्स के बीच के संबंध और मजबूत हो जाते हैं। श्रोताओं, जिस दिशा में ध्यान और अभ्यास जाता है, मस्तिष्क उसी दिशा में स्वयं को व्यवस्थित करने लगता है।

अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, शिकायतें करते हैं या भय को पालते हैं, तो मस्तिष्क उसी प्रकार की प्रतिक्रियाओं के लिए डिफॉल्ट पाथवे बना लेता है। लेकिन अगर हम कृतज्ञता, समाधान केंद्रित सोच, करुणा का अभ्यास करें, तो धीरे धीरे नए न्यूरल नेटवर्क विकसित होने लगते हैं। छोटी छोटी कार्यों को भी माइंडफुल होकर करना, सकारात्मक आदतें विकसित करना, ये सब मस्तिष्क को सक्रिय, लचीला और जीवन बनाए रखते हैं।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना। किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम था बड़े दिलवाले।

श्रोताओं, हमारी पुस्तकें पढ़ने की रुचि क्यों कम होती जा रही है? देखा जाए तो किताबों के प्रकाशन में बढ़ोतरी हुई है, इनको खरीदने के जरिए भी उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी किसी से अगर पूछा जाए कि हाल ही में आपने कौन सी किताब पढ़ी है तो इधर उधर झांकने लगते हैं। कुछ लोग इस सवाल पर ये प्रतिक्रिया भी देते हैं कि पढ़ने का समय भी नहीं है। पढ़ने का समय कहाँ है? इसका अर्थ ये लगाना चाहिए कि पढ़ने वाला सब्र अब नहीं रह गया, किसी के पास नहीं है। श्रोताओं, दरअसल पढ़ना एक बड़ी चुनौती रखता है। शब्द परिचय, भाषा सौंदर्य और कल्पना शक्ति का प्रबल होना। लेकिन सच तो यह है कि कल्पना करना कौन चाहता है आज की दुनिया में? हम ध्यान केंद्रित न कर पाने वाले दौर में जी रहे हैं, जहां जरा सा ठहराव आ जाए जीवन में, जिसे शायद शांति भी कहा जा सकता है, तो लोगों को तनाव होने लगता है। वे मन बहलाव यानी भटकाव के जरिए तलाशने लगते हैं। कोई कहेगा पसंदीदा गाना बजाओ और नाचो, कोई दोस्त को फोन करने का सुझाव देगा। कितने लोग कहेंगे कि किताब उठाओ और लेखक की कल्पनाओं के साथ मन को बांधो। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि किताबों से मिलता क्या है, ऐसा क्या बता देगा लेखक जो इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। बहुत कुछ जो कहीं और नहीं मिल सकता, किताबें हमें अपने आप से मिलने का मौका देती है। इस मुलाकात की गति पाठक खुद तय करते हैं। लेखक किसी पात्र, किसी घटना, विचार, तर्क को लेकर बात करते हैं और उसके आईने में आप खुद को देख पाने का अवसर पाते हैं। भाषा, शैली, सोच की समृद्धि तो मिलती है हमें किताबों से, है ना श्रोता? दरअसल पढ़ना एक तरह का मेडिटेशन भी है, जिसे पूरे मन से किसी की बात सुन रहे हैं हम। किताबों सा दोस्त नहीं, एक ऐसा दोस्त जो नया सीखने को सदैव तत्पर है, नया सिखाने को सदैव तत्पर रहता है, जिसके पास कहने को हजारों बातें हैं, किस्से हैं। सुनना शुरू करें आज ही से।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज़ में जख्म फिल्म का ये गाना। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था MM क्रीम ने।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
2: प्रिय जिलावासियों जोहार, मैं नीतीश कुमार सिंह, उपायुक्त सरायकेला खरसावां, समस्त जिलेवासियों से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब आपकी बारी। धन्यवाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
5: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग

0: नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, 110001।
0: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

अंतराल के बाद कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दिन के 11:31 हुए हैं। श्रोताओं कार्यक्रम में अब कुछ सेहत की बातें। देर से सोने वालों के लिए खतरे के नए संकेत सामने आए हैं। श्रोताओं नतीजे कहते हैं कि जो लोग रात 1 बजे सोते हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य को कई जोखिम हो सकते हैं। ऐसे लोगों में तनाव, अवसाद और बेचैनी का स्तर बहुत बढ़ा हुआ हो सकता है। करीब 75,000 लोगों पर किया गया शोध बताते हैं कि इनमें देर से सोने वाले, जल्दी उठने वाले और सही समय पर सोकर पूरी नींद लेने वाले लोग शामिल थे। शोध के तहत 1 हफ्ते तक सभी के नींद के पैटर्न को दर्ज किया गया। इसके साथ ही उनकी सेहत से जुड़ी तमाम जांचों के नतीजे भी दर्ज किए गए। इन सब के मद्देनजर 1 बजे सोने वाले लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में अवसाद और बेचैनी के लक्षण दिखाई दिए और इनके बिगड़ने की आशंका भी। जबकि सुबह उगते हुए सूरज के साथ उठने वालों की मानसिक सेहत बहुत अच्छी पाई गई। शोधार्थियों ने इंगित किया है कि देर से सोने वालों की निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। रात में जागने वाले अवसादग्रस्त हो सकते हैं और इसी के चलते नकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। आधी रात के बाद मन वो शरीर में होने वाले परिवर्तन, नकारात्मक मूड और खतरे उठाने की सोच को बदल देते हैं। वहीं जो लोग समय पर सोकर जल्दी उठते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी निर्णय क्षमता देर से उठने वालों की तुलना में बेहतरीन पाई गई है। तो श्रोताओं, अगर आपको रात में नींद नहीं आती है या सोने में परेशानी होती है तो आप सोते समय अच्छा संगीत सुन सकते हैं। संगीत मन को सुकून देता है और मस्तिष्क को शांत रखता है।

अभी आप सुन रहे थे दम लगा के हईशा फिल्म का ये गाना। मोनाली ठाकुर की आवाज़ में बोल वरुण ग्रोवर के थे और संगीत से सजाया था अनु मलिक ने।

श्रोताओं, आज है भारतीय सिनेमा के दिग्गज और युग पुरुष निर्देशक मृणाल सेन का जन्मदिन, जिन्हें सत्यजीत राय और ऋतिक घटक के साथ मिलकर भारतीय समानांतर सिनेमा की नींव रखने वाला माना जाता है। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को यथार्थवादी अंदाज में प्रस्तुत किया। उनका जन्म फरीदपुर में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश काम कोलकाता में किया। मृणाल सेन अपनी फिल्मों में मध्यम वर्ग के स्वार्थ, पाखंड और समाज की सतही नैतिकता की आलोचना के लिए जानी जाती थी। उनकी शैली यथार्थवादी और प्रयोगधर्मी थी। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी फिल्मों ने कान, वर्लिन और वेनिस जैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कई पुरस्कार जीते। वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, जो उनकी फिल्मों में

श्रोताओ, आज है अभिनेता और निर्देशक सचिन खेड़ेकर का जन्मदिन, जो हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल और मलयालम सिनेमा में अपने दमदार अभिनय के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द फॉरगॉटन हीरो और अस्तित्व जैसी फिल्मों में शानदार काम किया और एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में माने जाते हैं अभिनेता सचिन खेड़ेकर। उनका जन्म मुंबई में हुआ था और परवरिश विलेपार्ले में। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत मराठी फिल्म जीवा सखा से की थी 1990 में। उनके प्रमुख फिल्मों में अस्तित्व, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गोलमाल अगेन और काकस्पर्श शामिल हैं। उन्होंने लोकप्रिय टेलीविजन सीरीज इम्तिहान और संविधान में भी अभिनय किया। उन्हें उनकी शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको सुनवाते हैं सचिन खेड़ेकर अभिनीत अस्तित्व फिल्म का ये गाना।

आप सुन रहे थे अस्तित्व फिल्म का गाना, सुखविंदर सिंह की आवाज़ में गीत और संगीत था सुखविंदर सिंह का। श्रोताओं, आज है अभिनेत्री मॉडल ज़रीन खान का जन्मदिन, जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के साथ साथ पंजाबी और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने 2010 में सलमान खान की फिल्म वीर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने फिल्म वीर के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू के लिए जी सिने अवार्ड में नामांकन भी प्राप्त किया था। रेडी, हेड स्टोरी 3, हाउसफुल 2 फिल्मों के लिए जानी जाती है अभिनेत्री ज़रीन खान। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको सुनवाते हैं अभिनेत्री ज़रीन खान अभिनीत वीर फिल्म का ये गाना।

श्रेया घोषाल और रूप कुमार राठौर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे वीर फिल्म का ये गाना। गीत लिखा था गुलजार ने, संगीत से सजाया था साजिद वाजिद ने। श्रोताओं, चलते चलते मौसम का हाल आपको बता दें। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की भी संभावना है। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गाना शतरंज फिल्म से। कुमार सानू और साधना सटकम की आवाज़ों में गीतकार हैं समीर, संगीतकार आनंद मलंद।

0: पर।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर, आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी इस सभा में दिन के 12:05 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत। दिन के 12 बजने वाले हैं, अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुनेंगे समाचार, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केन्द्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
2: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सबके लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्यवर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं समय आपने ट्यून किया है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 12:05 हुए हैं। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत हमारे श्रोता सुनेंगे बस थोड़ी देर में।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

प्यार में तेरे ये हाल है कि बेहाल हो गए हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं पर बात होठों तक आते आते रुक जाती है। जब जब तुम नज़रों के सामने आते हो नज़र झुक जाती है, क्या ये तेरा जादू है?

चुपके से आकर इस दिल में उतर जाते हो, चुपके से आकर इस दिल में उतर जाते हो, सांसों में खुशबू बनकर बिखर जाते हो। कुछ यूं चला आपके प्यार का जादू।

अंतरंग हिमालय की गंगा सी हंसती है, वो मस्त मलंगा सी बस मुझ में बसती है। है कोई नशा उसमें मदमस्त अदाओं में, है कोई नशा उसके मदमस्त अदाओं में, है मिजाज में दरियापन आँखों में मस्ती है। हर बार जो देखूं तो हर बार नया लगती है, हर बार जो देखूं तो हर बार नया लगती है, है वो जादूगर कोई जादू सा करती है।

श्रोताओं, शीर्षक गीत के आज के इस कार्यक्रम में आज का हमारा शीर्षक था जादू। जादू शीर्षक गाने आपको जरूर पसंद आए होंगे, ऐसी हमारी आशा है। बहरहाल आज इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गाने आपने सुने, फिल्में थी डर, गुलाम, जिस्म और दस्तक। इन गीतों के लिए आवाजें थी उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू और श्रेया घोषाल की। गीतकार थे आनंद बख्शी, समीर, नीलेश मिश्रा और जावेद अख्तर। संगीत से सजाया था शिवहरी, जतिन ललित, एमएम क्रीम और राजेश रोशन ने। इसी के साथ फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत अब संपन्न हुआ। हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। श्रोताओं, हमारे इसी सभा में फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं दिन के 1:20 पर और दिन के 2:30 पर। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए पंडित विष्णु गोविंद जोग का वायलिन वादन, राग है शुद्ध सारंग।

0: आप सुन रहे थे राग शुद्ध सारंग में पंडित विष्णु गोविंद जोग का वालन वादन। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफ 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी अगला प्रसारण हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे। दिन के 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। अपने राज्य केंद्र से रिले कर प्रादेशिक समाचार हम आपको सुनवाएंगे दिन के 1:10 पर। और दिन के 1:20 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अभी आइए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार नियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जागृटेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कोयला राज्य मंत्री ने की झरिया मास्टर प्लान और पुनर्वास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा। निर्माण कार्यों की निगरानी करेंगे आईआईटी और आईआईएम। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य संशोधित रिजल्ट मामले में जेएसएससी को प्रार्थियों की सीटें सुरक्षित रखने का दिया निर्देश। अगली सुनवाई 7 जुलाई को। राज्य में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को हाईटेक बनाने की तैयारी। सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में लगेंगी ऑटोमेटिक पैथोलॉजी मशीनें। कोयला मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम ने रांची में की सीसीएल की समीक्षा। सोशल मीडिया और तकनीकी कार्यों में हिंदी के उपयोग को सराहा। और रांची में वैज्ञानिक पद्धति आधारित लाह खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बांटे टूलकिट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कोयला भवन में संशोधित झरिया मास्टर प्लान और जेआरडीए के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जिला प्रशासन विस्थापित परिवारों को उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और पेंशन जैसी सरकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि बेलगढ़िया टाउनशिप और अन्य पुनर्वास क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों का सहयोग लिया जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य के संशोधित रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जेएसएससी को प्रार्थियों के लिए सीट सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए आगामी 7 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने काफिले से गाड़ियां कम करने की पहल का भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने स्वागत किया है। आदित्य साहू ने प्रधानमंत्री के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं को भी प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेनी चाहिए।
1: पेट्रोल डीजल को लेकर के वैश्विक कठिनाई उत्पन्न हुई है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों की वेदना को समझते हैं और उनकी कठिनाइयों को हर संभव 24 घंटा दूर करने में लगे रहते हैं। पेट्रोल डीजल की कमी आयात होने के चलते देशवासियों से अपील किया है कि कम से कम डीजल पेट्रोल उपयोग करने का काम करें, जो आवश्यक आवश्यकता है उसी में इसका उपयोग करने का काम। उनके काफिला थे उसमें भारी कमी की गई है। जो गाड़ियां उनके काफिले में है वो भी बैटरी सिस्टम से चलने वाली गाड़ियां हैं।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री बचत की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता जमीन पर काम करने के बजाय केवल फोटो खिंचाने और इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त हैं।
2: भारतीय जनता पार्टी का जवाब समय आने पर दिया जाएगा। चुनाव रहता है तब तो आप बड़ी बड़ी बात कर देते हैं और चुनाव खत्म हो गया आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। उसके पहले अर्थव्यवस्था की बात आपके द्वारा कहाँ कहा जा रहा था। देश चलाने में ये असफल रहे और जनता भी समझ रही है कि आप जनता के साथ क्या कर रहे हैं।
0: राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में पूर्णतः ऑटोमेटिक पैथोलॉजी मशीनें लगाने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि पहले चरण के बाद इस योजना का विस्तार सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक किया जाएगा। रांची में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यातायात पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अधिकारियों को ब्लैक फिल्म, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इसके अलावा ऑटो और ई रिक्शा चालकों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य करने तथा स्कूलों के समय यातायात दुरुस्त रखने को कहा गया है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने दो दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि देश में कहीं भी कोई आपदा आए या आने के संकेत मिले तब एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
3: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: कोयला मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय टीम ने रांची स्थित सीसीएल मुख्यालय में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। डॉक्टर माणिक चंद्र पंडित के नेतृत्व में आई इस टीम ने प्रशासनिक, तकनीकी कार्यों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर हिंदी के उपयोग का जायजा लिया। समीक्षा के दौरान सीसीएल प्रबंधन ने बताया कि राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025-26 में कुल 19 कार्यशालाएं आयोजित की गई। रांची के लापुंग प्रखंड के सिद्कोफेट द्वारा वैज्ञानिक पद्धति आधारित लाह खेती प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तर्की बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान 3 पंचायतों के 377 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही आगामी जून जुलाई माह में प्रत्येक किसान को 5-5 किलो कुसुमी एवं रंगीनी लाह बिहन शत प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। रांची के सिविल सर्जन ने राजधानी के सभी निजी अस्पताल संचालकों के साथ आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि योजना के तहत आने वाले पात्र मरीजों को बिना किसी परेशानी के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए।
4: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आगे बढ़ाना और एबीडीएम में झारखंड और रांची सदर अस्पताल भी काफी आगे बढ़े हैं। राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम हुआ, इसकी चर्चा हुई कि यहां काफी अच्छा काम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हो रहा है।
0: स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के तहत केंद्रीय जांच टीम ने मानगो नगर निगम क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। सुबह NH-33 और बालीगुमा से शुरू हुए इस निरीक्षण में टीम ने कचरा संग्रहण प्रणाली का जायजा लिया और घरों में जाकर लोगों से सीधा फीडबैक लिया। इस दौरान मोबाइल ऐप के जरिए केंद्रीय सर्वर पर ग्राउंड रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज की गई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 595 अंक बढ़कर 75,204 पर और निफ्टी 208 अंक की वृद्धि के साथ 23,620 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,50,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 3,05,000 रुपये प्रति किलो है। पलामू जिले में कल देर शाम आई तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में पेड़ गिरने से एक अधेड़ समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज मेदनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने संताल परगना प्रमंडल समेत कई जिलों में कल 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, वज्रपात और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 16 मई को रांची समेत 15 जिलों के लिए ऐसा ही ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोयला राज्य मंत्री ने की झरिया मास्टर प्लान और पुनर्वास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा। निर्माण कार्यों की निगरानी करेंगे आईआईटी और आईआईएम। झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक आचार्य संशोधित रिजल्ट मामले में जेएसएससी को प्रार्थियों की सीटें सुरक्षित रखने का दिया निर्देश। अगली सुनवाई 7 जुलाई को। राज्य में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को हाईटेक बनाने की तैयारी। सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में लगेंगी ऑटोमेटिक पैथोलॉजी मशीनें। कोयला मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम ने रांची में की सीसीएल की समीक्षा। सोशल मीडिया और तकनीकी कार्यों में हिंदी के उपयोग को सराहा और रांची में वैज्ञानिक पद्धति आधारित लाह खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तर्की ने बांटे टूल किट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:20 हुए हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे थोड़ी देर में।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
3: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
4: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
5: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या का जन्मदिन, जिन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय प्रोडक्शन के तहत हम आपके हैं कौन और विवाह जैसे ब्लॉकबस्टर पारिवारिक फिल्मों का निर्माण किया। वे मशहूर निर्देशक सूरज बड़जात्या के पिता थे और हिंदी सिनेमा में पारिवारिक मूल्यों पर आधारित फिल्मों के लिए जाने जाते थे। कार्यक्रम की शुरुआत मैंने प्यार किया फिल्म के इस गाने के साथ।

आप सुन रहे थे मैंने प्यार किया फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार थे देव कोहली, संगीतकार राम लक्ष्मण।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विवाह फिल्म का गाना। श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाजों में गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोता समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। वक्त है छोटे से अंतराल का, अभी हाजिर होते हैं।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: जलवायु परिवर्तन क्या है, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
5: अंतराल के बाद फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दिन के 1:38 हो रहे हैं।

हरिहरन प्रतिमा राव, घनश्याम वासवानी, संतोष तिवारी और रविंद्र रावल की आवाज़ों में आप सुन रहे थे हम साथ साथ हैं फिल्म का ये गाना। इस गीत को लिखा था रविंद्र रावल ने और संगीत से सजाया था राम लक्ष्मण ने।

राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे देव कोहली का लिखा ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन।

गाना आरती मुखर्जी की आवाज़ में, गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे थे राष्ट्रीय प्रोडक्शन के तले बनी फिल्मों के गाने। आज है राष्ट्रीय प्रोडक्शन के निर्माता राजकुमार बरजातिया का जन्मदिन। राजकुमार बरजातिया ताराचंद बरजातिया के पुत्र और निर्देशक सूरज बरजातिया के पिता थे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर राष्ट्रीय प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया, जिसे उनके पिता ताराचंद बरजातिया ने 1947 में स्थापित किया था। 21 फरवरी 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से 102.4 MHz पर। फिल्म संगीत का आनंद आप एक बार फिर से ले सकते हैं दिन के 2:30 पर। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। विश्व में भारत में ताजा घटनाओं की जानकारी आपको मिलती है समाचारों से। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे दिन के 2 मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार बुलेटिन। तो अभी आइए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satheeshan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. Iran war, global energy crisis, tariffs and trade tensions high on agenda. And in badminton, India's P.V. Sindhu and men's doubles pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. India today asserted that expectations are growing for BRICS to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated this in his opening remarks on the commencement of the two-day BRICS foreign ministers meeting in New Delhi today. The meeting is being chaired by Dr. Jaishankar. Foreign ministers and heads of delegation from BRICS member countries and partner nations are participating in the meeting. Speaking on the occasion, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said many countries continue to face challenges on energy, food, fertilizer and health security, and BRICS can help them respond more effectively.
1: We meet at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.
0: Dr. S. Jaishankar said recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy.
1: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
0: Dr. Jaishankar said today's BRICS meeting provides a platform to exchange perspectives and develop convergences.
1: Gathering today for the BRICS meeting is, however, a special occasion. It allows us to exchange perspectives and encourages us to develop convergences. And in this complicated and uncertain world, that is of ever greater importance. Excellencies, India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. These engagements have strengthened cooperation and advanced dialogue across sectors. We look forward to building on this momentum.
0: During the meeting, the foreign ministers will exchange views on global and regional issues of mutual interest. The theme for India's BRICS chairship this year is building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. Foreign ministers of several countries are participating in BRICS meeting. They include Brazil's Mauro Vieira, Russia's Sergei Lavrov, Iran's Syed Abbas Araghchi, Indonesia's Sugiono, Dato' Seri Utama Mohammed bin Haji Hassan from Malaysia, UAE's Khalifa Shaheen Al-Marar and Ronald Lamola from South Africa, among others. The foreign ministers will also call on Prime Minister Narendra Modi this afternoon. On the second day tomorrow, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. Meanwhile, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Indonesian counterpart, Sugiono, on the sidelines of the meeting this morning. In a social media post, Dr. Jaishankar said they reviewed the progress of the Comprehensive Strategic India-Indonesia Partnership and the cooperation with the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. India and the UAE are set to take their already robust partnership to the next level as Prime Minister Narendra Modi meets UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi tomorrow. The visit comes amid growing high-level engagement between the two countries. The UAE President had visited New Delhi in January this year, his fifth visit to India in the past decade, and the third as President of the UAE. During their meeting earlier this year, the two leaders had reviewed the full scope of their comprehensive strategic partnership and witnessed the exchange of several significant agreements. Among the most consequential was a letter of intent to work towards a formal strategic defense partnership, marking a major step forward in bilateral security ties. Our correspondent has more details.
2: In a major energy partnership, ADNOC Gas and Hindustan Petroleum Corporation Limited signed a 10-year liquefied natural gas supply agreement valued at an estimated $3 billion earlier this year. The UAE and India has also reaffirmed their commitment to expand bilateral trade to $200 billion by 2032, building on the momentum of the comprehensive economic partnership agreement. Both sides further agreed to cooperate on setting up a supercomputing cluster in India. Now let's hear from the Indian ambassador to the UAE, Sri Deepak Mittal.
3: The visit of His Highness Sheikh Mohammed in January, there were identified new areas, advanced areas of technology. We had the visit of His Highness Sheikh Khalid, the Crown Prince of Abu Dhabi, in February for the AI Impact Summit. So the visit of Honorable Prime Minister is very opportune, happening at a time when the region is going through some unprecedented times.
2: The United Arab Emirates is India's second largest export destination, with exports reaching $37 billion. With over 4 million Indians living in the Emirates, the bilateral relationship remains as much as people-to-people story as it is a strategic one. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
0: India has called the attack on an Indian flagged ship off the coast of Oman yesterday as unacceptable. In a statement, spokesperson of the External Affairs Ministry, Randhir Jaiswal, deplored the fact that commercial shipping and civilian mariners continue to be targeted. He informed that all Indian crew on board are safe and thanked the Omani authorities for rescuing them. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next phase of India-Africa collaboration will focus on higher value products and integrated supply chains across sectors such as agriculture, digital infrastructure, healthcare, clean energy, manufacturing and technology. Mr. Goyal was addressing the curtain raiser for the India-Africa Business Dialogue and Exhibition and the India-Africa Forum Summit in New Delhi yesterday. He also expressed confidence that the India-Africa Business Dialogue and Exhibition to be held in New Delhi from the 29th to the 31st of this month, alongside the 4th India-Africa Forum Summit, will be a success. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Union Home Minister Amit Shah today said India has emerged as a global leader and first responder in the field of disaster management. Mr. Shah said the country has provided global leadership in the field of disaster-resilient infrastructure. He highlighted that 48 countries are now members of the Coalition for Disaster-Resilient Infrastructure, CDRI, and are working together with India in this direction. Mr. Shah was addressing the gathering after presenting the prestigious President's Colour Award to the National Disaster Response Force, NDRF, at their 8th Battalion campus in Ghaziabad. He said for any force, receiving the President's Colour's honour is a matter of immense pride.
4: The conferment of President's honor upon National Disaster Response Forces is a matter of pride and prestigious for all of us. This recognition honors the collective values of service, courage, valor and dedication displayed by the entire force. Within a short span of less than 20 years, National Disaster Management Authority and NDRF has played a significant role in placing India on the global map in the field of disaster response and rescue operations.
0: Minister of State for Defence Sanjay Seth today described Operation Sindoor as a landmark success that demonstrated India's capability to conduct swift, coordinated operations using indigenous weapons and systems. The minister was addressing the inaugural session of the third edition of Kalam and Kavach in New Delhi.
5: Today's world is changing rapidly. The nature of warfare is evolving. Threats are no longer confined to physical borders. They now extend into cyberspace, space, information network, and emerging technologies. In such environment, security demands not only preparedness, but also foresight. That is why the idea of JAI, given by our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi ji during the latest commander conference, jointness, Atmanirbharta, innovation is so important for India's future.
0: The event serves as a premier strategic platform bringing together senior policy makers, military leadership and defense industry stakeholders to deliberate on India's evolving defense transformation and indigenous capability development. Putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days, Congress today announced the name of V.D. Satheeshan as the new Chief Minister of Kerala. The announcement was made by Congress leaders Ajay Makan, Mukul Vasnik and Deepa Das Munshi during a press conference in New Delhi. With the announcement, the Congress-led UDF will proceed to form the government in the state. UDF secured a more than two-thirds majority in the Kerala Assembly elections, but the party was unable to decide its chief ministerial face due to lobbying by different camps and protests by workers at the ground level. The BJP today hit out at the Congress leader and leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, over his foreign visits. Briefing media in New Delhi, BJP spokesperson Sambit Patra said, Mr. Gandhi is in public life for the last 22 years and during the period he has undertaken 54 visits. Mr. Patra alleged that the estimated amount of 60 crore rupees was spent by him personally on his foreign visits. The Tripura government has introduced a series of austerity measures to reduce expenditure and conserve fuel. In a memorandum issued yesterday, the state government directed all departments to ensure that only 50% of Group C and Group D employees attend office each day, while the remaining staff will work from home on a rotational basis. The crucial talks between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping is underway in Beijing. Iran war, global energy crisis, tariffs, trade tensions, Taiwan and artificial intelligence are likely to dominate the agenda. Earlier in his opening remarks, President Xi called for China and the US to be partners, not rivals. In his opening remarks, US President Trump described his Chinese counterpart as a great leader and said the relationship between the two superpowers will be better than ever before. The US President arrived in Beijing last evening for the high-stakes summit with Chinese President. The US President has brought along several top business and technology executives on his visit to China. Among the prominent executives accompanying the President are NVIDIA CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook, Tesla and SpaceX chief Elon Musk. In badminton, India's PV Sindhu and top men's doubles pair of Sattvic Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the quarterfinals of Thailand Open with impressive victories today. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Denmark's Amalie Schultz in women's singles. World number 12 Sindhu will now face reigning world champion Akane Yamaguchi of Japan in the quarterfinals. In men's singles, 7th seed Lakshya Sen defeated Chinese Taipei Su Li Yang to enter the last eight. Meanwhile, top-seeded Indian men's doubles pair Sattvic and Chirag defeated Malaysia's Brian Jeremy Gunting and Mohammad Haikal to book their place in the last eight. News just in. Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satheeshan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Sattvic Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
6: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
7: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
6: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
7: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
6: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
8: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
9: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
10: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
9: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात 37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
6: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
11: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
6: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
7: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज शी जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी नेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
6: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।

मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार बुलेटिन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2:30 हुए हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे बस थोड़ी देर में।

0: Akashvani at 90.
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: श्रोता, एक आवश्यक सूचना। नीतीश कुमार सिंह, उपायुक्त सरायकेला खरसावा, समस्त जिले वासियों से अनुरोध करते हैं कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुँचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से se.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। ये पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता ही प्राथमिकता है। जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने की अब आपकी बारी है। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का आगाज करते हैं जुबैदा फिल्म के इस गाने के साथ। आवाज कविता कृष्णमूर्ति की है, गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार एआर रहमान। उतर रही है अजब खुशबुएं रगों पै में, ये किसको छूके मेरे शहर में सबाई।

दिन पहर घड़ी लम्हे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक के बाद एक दूसरा मौसम चुपचाप चला आता है और हम उसमें खो जाते हैं।

जतिन ललित के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में। फिल्म का नाम था जो जीता वही सिकंदर। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा ये गाना, शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है जीने नहीं दूंगा। श्रोताओं, किसी की आवाज़ इतनी प्यारी होती है कि दिल में उतर जाती है और हम अकेले में सोचते रहते हैं कि वो आवाज़, उस आवाज़ का मालिक कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। जो यादों में बस जाते हैं उनका यादों में आना कैसा, याद आने से पहले ही आ जाए तो अच्छा।

याद आने से पहले तो माँ जाया करो, तुम याद ना आया करो। श्रोताओं, किसी के आने की खबर से दिल में कितनी तरंग की उठने लगती है, धड़कनें तेज हो जाती है। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आप सुन रहे थे जतिन ललित के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा ये गाना। अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म का नाम था फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और श्रोताओं, इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2:55 बज जाते हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि देश में कहीं भी कोई आपदा आए या आने के संकेत मिले तब एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
3: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है।
4: ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
2: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें शीघ्र और समन्वित कार्रवाई के साथ स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वास्तविक सुरक्षा सैन्य बलों की तकनीकी उत्कृष्टता और आत्मनिर्भरता से हासिल होती है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के तहत केंद्रीय जांच टीम ने पूर्वी सिंहभूम के मानगो नगर निगम क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। सुबह NH-33 और बालीगुमा से शुरू हुए इस निरीक्षण में टीम ने कचरा संग्रहण प्रणाली का जायजा लिया और घरों में जाकर लोगों से सीधा फीडबैक लिया। इस दौरान मोबाइल ऐप के जरिए केंद्रीय सर्वर पर ग्राउंड रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज की गई। सरायकेला जिले के कांडरा थाना क्षेत्र स्थित अमलगम कंपनी के मुख्य गेट पर आज विस्थापित कालिंदी परिवारों ने जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और कर्मचारियों का प्रवेश निकास पूरी तरह बाधित कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्ष 2003 में कंपनी स्थापना के लिए उनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी। उस समय प्रभावित परिवारों को स्थायी रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 23 वर्ष बीत जाने के बाद भी सभी कालिंदी परिवारों को नौकरी नहीं मिल सकी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल डीजल की खपत कम करने संबंधी देशवासियों के आह्वान का असर हजारीबाग में भी दिखने लगा है। हजारीबाग नगर निगम के महापौर अरविंद कुमार राणा अब मोटरसाइकिल से कार्यालय आ रहे हैं। मोटरसाइकिल के पीछे अपने बॉडीगार्ड को बिठाकर वे शहर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि जहां तक हो सके हम लोगों को बचत करनी चाहिए, विशेषकर वैसे संस्थान पर जो हम आयात करते हैं। मैंने

0: तय किया है कि जहाँ कहीं संभव हो अपने वहाँ से चलूं। राष्ट्र रहेगा, हमारा समाज रहेगा, राष्ट्र के लिए हम सबों को राष्ट्र प्रथम मानकर काम करना चाहिए। अगर चीजें इस तरह ही रहे, जो विदेशी मुद्रा भंडार है तो कम होगा।
1: झारखंड में अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू किए जाने के लिए आज रांची में ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में किया गया। इस मौके पर राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार, विभागीय सचिव, अधिकारी और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। राज्य के अलग अलग हिस्सों में कल देर शाम आई तेज आंधी और बारिश ने काफी नुकसान किया है। इस प्राकृतिक आपदा में पेड़ गिरने से पलामू में एक बुजुर्ग समेत दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल का इलाज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। राजधानी रांची में भी कई जगह पेड़ और बिजली के पोल गिर जाने से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने संताल परगना प्रमंडल समेत कई जिलों में कल 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, वज्रपात और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 16 मई को भी रांची समेत 15 जिलों के लिए ऐसी ही चेतावनी जारी रहेगी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोता, इस समय आपने ट्यून किया है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के ठीक 3 बजे हैं। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
1: जी श्रोताओ, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
1: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी। जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
1: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी
1: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
1: इसके मुख्य लक्षण हैं चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
1: श्रोताओ, ये सामान्य लक्षण है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
1: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वो सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें। लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें। उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओ, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओ, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
2: जी
1: तो भाई, मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
2: जी
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
2: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
1: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
3: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
1: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
3: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस।

0: जाओ ना।
1: बादल बोले,
2: मेंढक टर टर बोले, तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
2: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
3: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
4: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
5: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
4: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत

0: है। भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें, तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
2: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
3: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
4: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। पर ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
3: आजा खेलते हैं।
4: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
5: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
4: अच्छा वो क्या?
5: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
4: हाँ
6: दूसरा क्या?
5: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
3: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे, शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: देखो चुन्नी लाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी, और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई।

0: भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
1: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
2: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
1: जी
0: अच्छा, बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
3: उधर से दुश्मन आ रहे हैं, फायरिंग शुरू करो।

0: ही नहीं, यही रोक कर रखना। मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूँ।
1: ठीक है साहब, ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैनगन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस समय आपने ट्यून किया है FM के 102.4 MHz पर आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 3:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए अलका याग्निक और हरिहरन की आवाजों में गीत।

आप सुन रहे थे अलका याग्निक और हरिहरन की आवाज़ में गीत सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। दिन के 3:45 हुए हैं। लोकगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी देर में।

कार्यक्रम लोक गीत के साथ मैं राजेश नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मगही लोकगीत। कलाकार हैं निशि।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश। और शाम के 4:02 पर आप सुनेंगे वीर सैनिकों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, जिसका प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अभी आइए।

0: प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें शीघ्र और समन्वित कार्रवाई के साथ स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। सरायकेला जिले के कांडरा थाना क्षेत्र स्थित अमलगम कंपनी के मुख्य गेट पर आज विस्थापित परिवारों ने जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और कर्मचारियों का प्रवेश निकास पूरी तरह बाधित कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्ष 2003 में कंपनी स्थापना के लिए उनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अब तक प्रभावित परिवारों को स्थायी रोजगार नहीं दिया गया है। झारखंड में अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू किए जाने के लिए आज रांची में ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में किया गया। इस मौके पर राज्य के नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार, विभागीय सचिव अधिकारी और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। भारत सरकार की जनगणना 2027 को सफल बनाने को लेकर आज जामताड़ा जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पहल पर पटोदिया धर्मशाला में पोर्टल के माध्यम से स्वगणना शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने स्वगणना कार्य सहज ढंग से संपन्न किया। चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की हो रही परेशानी को देखते हुए चैंबर के सदस्यों ने स्वगणना कार्य में लोगों का सहयोग किया। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने आज रांची के हरमु स्थित नव निर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। सामुदायिक भवन का निर्माण सांसद निधि से कराया गया है। उद्घाटन के बाद सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि यह भवन खास तौर पर आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। शाम के 4:02 हुए हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे वीर सैनिकों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: वो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल। और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना। तो भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
0: अच्छा विनीता जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी मेरे बचपन की तरफ, जहाँ पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था। जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर दूसरा था इंजीनियर की। ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है, नहीं तो नहीं। जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशन हैं। बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का। तो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया। बायो में मेरा काफी रुझान था, काफी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया। जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं MBBS कर पाऊं। हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं, करना है तो MBBS ही करना है। तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी, उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे।
1: अच्छा।
0: हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह। तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूं, तो उन्होंने बोला मेडिकल के तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहां से भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी। इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था। सो वहां से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एडमिशन ली। एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग। तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने का। लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना छोड़ दिया, वो बात नहीं होती, सपना हमें नहीं छोड़ता, ये बात होती है।
1: सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने।
0: सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेस कर रहा था कि नहीं, तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी। सो दैट वॉज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट IT कंपनीज में। सो लाइफ तो सेट थी। एज अ यंग पर्सन मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम। एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है। बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम। सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए, एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की। उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया। एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है कि हम मैसूर पहुंचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स SSB देने के लिए। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, SSB के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड। और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 डेज ऑफ SSB। वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा।
1: अमेजिंग। और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें।
0: जी बिल्कुल।
1: और साथ के साथ आपके आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए है ना। तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की। इसके आगे की यात्रा की बात आप से बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित है।

0: विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओह नाइस, अच्छा अच्छा, वो भी एयरफोर्स में?
1: जी हाँ, वो अभी सर्विंग है, विंग कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है। एंड बिल्कुल ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया? क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया, प्रतीक्षा जी मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स अकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना, बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी। और उस लास्ट थॉट्स, लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एयरफोर्स अकेडमी पहुंची, सो एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है। और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है।
0: सो अमेजिंग। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं। दे शुड लर्न कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नजरों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
1: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूं तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज थी मेरे लिए थी, वो थी रनिंग।
0: रनिंग?
1: जी हाँ, ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। तो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था।
0: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना।
1: हो सकता है।
0: अच्छा एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
1: जी विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक और चीज बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है, बिल्कुल आपको आपकी पास्ट लाइफ जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी जो आपको लाइफ, आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है। क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विद पोस्टिंग्स, आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं और आपको एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है, तो सारी चीजें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है। सो दैट इज दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस। तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें।

0: अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है आपकी नज़र में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी ज़िंदगी में, चाहे वो फोर्सेस में हों या सिविलियंस हों, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए। लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं, तो एज पर यू इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?
1: जी देखिए, डिसिप्लिन, आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है। सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेज में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए आर्म फोर्सेज बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके। सो उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है। अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन है तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा, और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सेकंड सेकंड का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकंड का बहुत बहुत मेजर इम्पोर्टेंस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग, हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सो इसीलिए जैसे आपने कहा बहुत हाईलाइट किया जाता है क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। कोई भी एक चीज अगर खराब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है। तो इस नजरिए से मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पाठ खुद क्या सीखा है, मतलब आपकी नजर में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनालिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फक्र से सब आपका नाम लेते हैं?
1: जी, लीडरशिप में मैं तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी। एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। आप अपनी टीम को अगर आप बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हैं इंटेग्रिटी होनी चाहिए तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा, वो होता है लीड बाय एग्जाम्पल। और तीसरी चीज है आपकी टीम। आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है। दैट इज वॉट इज लीडरशिप फॉर मी।
0: अमेजिंग, इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है। तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेज में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, आपने वहां भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूँ। तो ये तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई आपने, ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस रही है। बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप जानी जाती हैं। आप रिटायर्ड हुई हैं लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
1: जी देखिए, महिला या मर्द, मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है। फॉर दैट मैटर इवन डिफेंस फोर्सेज में कोई जेंडर बायस नहीं है जी। क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर मैं आपको मेरी ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला होके मैंने नहीं की है या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है। तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है। सो एज ए वुमेन अगर आप मुझे पूछे तो बहुत जरूरी है कि आप आपके मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर. बाहर सबको दुनिया एक समान देख रही है और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है. तो एज अ वुमेन मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए. आप उतनी ही केपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं.
0: जी बेहतरीन. मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है. ये बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है. तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी, या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं, या आर्मी नेवी एयरफोर्स ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपनी इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है. हैट्स ऑफ टू यू. आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर. और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है, तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता ही है.

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जिस पर आपको लगे कि ये वो पल है जो मैं सपना देख रही थी जिसका।
1: विनीता जी, वैसे तो काफी है। पहला तो था और अभी भी है, जो जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहली बार पहनी वो पक्का मेरा एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो सिर्फ याद नहीं रहता लेकिन उनके रूह में बस जाता है। और मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया था 26 जनवरी 2015 में। 26 जनवरी 2015 में जो आरडी परेड हुई थी, रिपब्लिक डे परेड, उसमें आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑल वुमेन कंटिंजेंट बना था। और मैं उस कंटिंजेंट का पार्ट थी एयरफोर्स की तरफ से।
0: ओह वंडरफुल।
1: अब आप सोचिए, एक लड़की जिसका बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, देश सेवा करना, अब वो देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी थी, वो था राजपथ। और पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ, पहले तो 2 महीने की उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि जनवरी एंड में होता है, 26 जनवरी को होता है पूरा परेड। तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया वो मेंटल टफनेस से स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल टफनेस पे जाती है, बिकॉज वो आसान नहीं होता है। वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो आपको पूरे कंटिंजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है
0: पूरे 14 किलोमीटर।
1: बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आप आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले। और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने। सो जब हम राजपथ पे चले तब मार्च किया कंटिंजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर जो राष्ट्रपति थे उस समय के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर, मिस्टर बराक ओबामा। सो एक वो जो सलामी थी जी, वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था बट वो एक हर महिला, हर लड़की, इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि उस राजपथ पे मैं चलूं। क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे दिमाग में होती है। और जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप खुद को प्रूव नहीं करते लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
0: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाएं, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सकें। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार हैं आपके। प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी, आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर से उस चीज पे जाना चाहूंगी जहां मैंने बोला कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है। क्योंकि एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का। लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है।
0: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया, और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया, बहुत ही सुंदर। अच्छा प्रतीक्षा जी एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल, और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है, एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल, और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का। पैरा जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है, लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया।
0: क्या बात है।
1: उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है, तब आप ट्रेन पैरा जंपर बनते हैं।
0: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं, ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती है?
1: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है, क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है, सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती है।
0: 2-3 दिन में?
1: जी हाँ। और उसके पहले अगेन हर एक चीज की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें, और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है। और आपको मैं एक और चीज बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे। और जब मेरी पहली जंप थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए, क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं क्या होने वाला है। तो पहली जंप तो बहुत मजेदार थी, और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो, कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है
0: जी।
1: क्योंकि जैसे कहते हैं, कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है, लेकिन आपको उड़ना सिखाती है। लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहले जंप में हुआ क्या था। तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताओ डर लगा था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली हूँ।
0: ओह माय गॉड।
1: बट तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, और एक मैजिकल फीलिंग थी उस टाइम पे, क्योंकि आप जब जंप कर जाते हो, आप वहां पे होते हो जहां पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो, चारों तरफ सन्नाटा है, और आपकी अपनी सांस से आप सुन पा रहे हो।
0: इनर स्ट्रेंथ।
1: वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है, दैट इज एक्चुअल फ्रीडम। एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो।
0: Awesome. कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, अगर आप देख सकें तो मतलब ऐसा, जब आप ये अभी एक्सप्लेन कर रही थी, ये बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे झांक रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है, आई मस्ट से कि आप बताती बहुत अच्छा है अपने अनुभव। और एक और बात बताइए, देखिए अभी आपने अभी तक जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी
1: जी।
0: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो, और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
1: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता, ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है
0: जी।
1: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है, और वो जिंदगी ही क्या जहाँ पे फेलियर्स ना हो। लेकिन आपको लाइफ सिखाती है कि आप गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए, ये जिंदगी है।
0: बहुत सुंदर।
1: तो आप जैसे पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफी आए हैं, लेकिन

0: इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए. अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा. एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है. रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे. जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उबर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं वो एक्चुअल लाइफ है.
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर. मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा. आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में जो हर किसी को, जो भी आपके संपर्क में आता है उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है. अच्छा, आपकी इस, जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
0: इमोशनल किया हो
1: जी,
0: ऐसे तो काफी इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूंगी कि कुछ चीजें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग उसके रीजंस हैं. कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफी सारी चीजें होती है, तो किसी भी रीजन के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने, मतलब मेरे नजरिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी, लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है
1: जी.
0: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है.
1: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है. केसरी फिल्म का गाना जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ.

0: संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी, जिनकी बातें ना केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए। तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा एफ कैट और सी डी एस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए।
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम, ये मंच उसी के लिए है ताकि हम जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम उनको अच्छा संदेश दें ताकि वो ज्वाइन कर सके। सो तैयारी के हिसाब से देखिए, मैं एक चीज़ शुरुआत में कहना चाहूँगी कि अगर आपका लक्ष्य नौकरी है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना देश सेवा है तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपने ये चीजें सुनी होंगी कि फौज में पढ़ाई नहीं है, जबकि मैं बताना चाहूंगी फौज में बहुत ज्यादा पढ़ाई है, और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं वो भी पढ़ाई करते रहते हैं, तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फौज ज्वाइन कर लिया। तो ये एक दिमाग में जरूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी। तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप अपना ट्वेल्थ पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आजकल जो अलग अलग तरीके के एग्जाम्स हैं, एफ कैट है, जैसे एयरफोर्स के लिए एफ कैट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और तो इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्जाम होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, सो आपके इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं, प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्जाम होता है। तो ऑल एंड ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई निजात नहीं है। उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं, आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है। जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज्यादा पढ़ाई होती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती। मेरे लास्ट डे तक भी, जहां मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी, पीटी, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के, और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ। तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है। अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
0: वाह, कलाम साहब ने ये बात कही
1: जी,
0: बहुत सुंदर। और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ये छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर कि जब आप कह रहे हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है, एंड वाइस वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से।

0: संदेश टू सोल्जर्स का लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे आज हमसे संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रही हैं। बहुत कुछ सजेशन उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं, बट विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में, हर फील्ड में लड़की है।

0: आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
1: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है और वो मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉरपोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेस से, जितना मैं वहाँ अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है, क्योंकि बाहर कॉरपोरेट में काफी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
0: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है। अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकती हैं?
1: पहली बात होगी, किसी चीज के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज, कोई काम करने के लिए और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापे,
0: जी
1: और किसी भी चीज के लिए मना मत कीजिए। किसी भी चीज से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है, बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स, आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
0: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
1: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास।
0: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी, आज आप संदेश टू सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं। मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए। आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ।
1: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। और आखिरी में बस एक लाइन कहूंगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और दोस्तों, सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स, हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का, धन्यवाद, जय हिंद
1: जय हिंद।

0: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से बाहर आए। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से बाहर आए। मौके पर अपने काफिले के साथ श्री आलम रांची के धुरवा स्थित आवास पहुंचे। झारखंड में अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू किए जाने के लिए आज रांची में ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में किया गया। मौके पर राज्य के नगर विकास मंत्री सुदेव्य कुमार, विभागीय सचिव, अधिकारी और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। केंद्र सरकार की जनगणना 2027 को सफल बनाने को लेकर आज जामताड़ा जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पहल पर पटोदिया धर्मशाला में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वगणना शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने स्वगणना कार्य सहज ढंग से संपन्न किया। चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को चैंबर के सदस्यों ने स्वगणना कार्य में सहयोग किया। और रामगढ़ समाहरणालय परिसर में आज कांग्रेस कमेटी प्रदेश महासचिव शांतनु मिश्रा के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने प्रशासन के समक्ष घर उजाड़ने के पहले उन्हें बसाने की व्यवस्था करने की मांग की। मौके पर श्री मिश्रा ने बताया कि अपनी संवैधानिक मांगों को लेकर वे अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं और उनकी मांगों पर सरकार को पहल करनी होगी। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार मुख्यांश का प्रसारण हुआ आकाशवाणी के रांची केंद्र से FM 102.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। शाम के 5:02 हो रहे हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं युववाणी FM 102.4 MHz पर। ऐसा लग रहा है मानो सूर्य अब धीरे धीरे पश्चिम की ओर जा रहा है। उसकी किरणें अब चुभती नहीं बल्कि सहलाती है। पेड़ों की परछाई भी लंबी हो रही है। वातावरण में शाम की शीतलता घुलने लगी है। इसी बदलती हुई हवा, बदलते हुए रंग और बदलती हुई मिजाज के साथ हम लाए हैं आपके लिए कुछ गीत, कुछ नई बातें और ढेर सारी यादें। मैं हूं आयुषी झा और आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। अपने शाम को और सुनहरा बनाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अगले आधे घंटे तक युववाणी से।

जीवन की इस नदी में हम सबको बहना है, जब भी संकट आए सकारात्मक रहना है। क्या वो नन्ही पंछी कभी आकाश में उड़ पाती? नहीं उड़ पाऊंगी यदि इस सोच में पड़ जाती। कितने प्रयासों के बाद वो अपने पंख को फैलाती है, यदि ना उड़ पाए तो मन को बहलाती है। क्या दूसरे पंछियों की उड़ान देखकर वो निराश हो गए? नहीं, प्रयासों से अपने वो तिमिर में प्रकाश हो गई। आकाश में उड़ती उन पंछियों का भी यही कहना है, जब भी संकट आए सकारात्मक रहना है। मॉडर्न क्रिकेट मास्टर विराट कोहली, सजता शीश जिनके क्रिकेट का ताज है, क्या बचपन से ही वो क्रिकेट में इतने निपुण थे जितने आज हैं? उपलब्धियों पर रुके नहीं और प्रैक्टिस सेशन की इंटेंसिटी बढ़ाते गए, रनों और शतकों का अंबार लगा दिया, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाते गए। अनुशासन और समर्पण से बने हैं वो, अपनी चोटों को नहीं सहलाते। यदि जीवन परिस्थितियों से हार जाते तो क्या क्रिकेट के राजा कहलाते? सही समय पर सब अच्छा होगा, ईश्वर का भी यही कहना है, जब भी संकट आए सकारात्मक रहना है। यदि महाभारत के युद्ध में परिणाम से अर्जुन डर जाते तो क्या गांडिव का प्रहार कर शत्रुओं पर विजय पाते? रुक जाते भगत सिंह सुखदेव और भय से झांसी की रानी सो जाती। वापस ले आते बोस यदि सैनिक अपने तो क्या भारत माता आजाद हो पाती? सोचो, किसी दिन थक के सूरज ही समय की गतिविधि तोड़ दे, और क्या होगा यदि उबकर पौधे ऑक्सीजन बनाना छोड़ दे? दुख से कौन बचा है, दुख तो सबको सहना है, जब भी संकट आए सकारात्मक रहना है। जीवन में बाधाएं आएंगी, तुम रुकना नहीं खड़े रहो। परिस्थितियां तुम्हें झुकाएंगी, तुम झुकना नहीं अड़े रहो। हार मान लोगे तो जीत का स्वाद कैसे चख पाओगे? मुसीबतों का सामना करोगे तभी विजेता कहलाओगे। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, जीवन में सही दिशा मिलेगी। नकारात्मकता से दूर रहो तभी सफलता की फूल खिलेगी। कर्म करो फल की चिंता नहीं, कर्म सबसे बड़ा गहना है, जब भी संकट आए सकारात्मक रहना है। जैसा सोच वैसा जीवन, ये सिर्फ कहावत नहीं विज्ञान है। आजकल लोग नकारात्मकता से घिर चुके हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, हमारे शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, इम्यूनिटी लो होती है, ओवरथिंकिंग से नींद की कमी होती है, डिप्रेशन एंजाइटी आदि समस्याएं हमें घेर लेती हैं। इन सभी समस्याओं का सिर्फ एक इलाज है, सकारात्मक सोच। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सकारात्मकता लाएं कैसे? इसके लिए हमें हमारे जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा। सुबह की पहली 30 मिनट स्वयं के साथ बिताएं, न दोस्त न फोन ना कोई साथी। हफ्ते में एक दिन तय कर लें जहां आप कोई भी शिकायत वाला शब्द नहीं बोलेंगे। दिन की 3 अच्छी बातें रात में एक डायरी में लिखें। इन आदतों के उपयोग से जीवन में पॉजिटिविटी लाया जा सकता है। अंधेरा कितना भी घना हो, एक छोटा दीप पूरी रात से जीत सकता है। इसी सकारात्मक सोच के साथ सुनते हैं एक सकारात्मक गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुन फया कुन, फिल्म रॉकस्टार, जिसे गाया है एआर रहमान, मोहित चौहान और जावेद अली ने। इसके गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार हैं एआर रहमान।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

यदि मैं प्रश्न पूछूं कि इंडियन क्रिकेट टीम के वनडे इंटरनेशनल के कप्तान का नाम बताएं, क्रिकेट फैंस का जवाब शुभमन गिल, राइट? मेन या वुमेन तो मैंने मेंशन ही नहीं किया था। यही है स्त्रियों और पुरुषों में भेदभाव। अब बात करेंगे हम महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण केवल क्रांति नहीं, समाज की प्रगति का आधार है। महिलाओं ने समाज की सोच से लड़कर, उनकी लगाई बेड़ियों को तोड़कर हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। फिर भी उन्हें अपने दैनिक जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज भी समाज स्त्रियों को पुरुषों से कम समझता है। कार्यस्थल में उन्हें अनुचित व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। समाज में महिलाओं को अक्सर उनके पहनावे, बोलचाल और जीवन शैली के आधार पर आंका जाता है। यदि कोई स्त्री आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करे तो उन्हें स्वार्थी कहा जाता है। स्त्रियों पर काम का और घर का दोहरा बोझ होता है। कार्यस्थल पर लंबे समय तक कार्य करने के बावजूद उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे घर की सारी जिम्मेदारियां बिना शिकायत के निभाएं। परिवार और नौकरी के बीच संतुलन बनाने के लिए स्त्रियों को निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब बेटी के जन्म पर खुशी मनाई जाएगी, उसकी शिक्षा को महत्व दिया जाएगा, उसे अपने सपनों को चुनने की पूरी स्वतंत्रता मिलेगी, समाज और कार्यस्थल में जब उसे सुरक्षित महसूस कराया जाएगा। हमारे भारत देश का इतिहास साक्षी है। जब अंग्रेजों से सभी जूझ रहे थे, तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई और अंग्रेजों को चारों खाने चित किया है। विश्व का इतिहास विस्तृत है। आज 14 मई है, आइए एक नजर इतिहास में आज के पन्नों पर डालते हैं। 1948 में इजराइल की स्वतंत्रता आज ही के दिन घोषित हुई थी। ब्रिटिश शासन खत्म हुआ था। 1796 में 8 वर्षीय जेम्स फिप्स को काउपॉक्स का पहला टीका लगाया गया था। यहीं से वैक्सीन की शुरुआत हुई थी। 1973 में नासा ने अमेरिका का पहला स्पेस स्टेशन स्काईलैब अंतरिक्ष में भेजा था। अब सुनते हैं ऊर्जा से परिपूर्ण एक गीत।

अभी आप सुन रहे थे दंगल फिल्म का टाइटल ट्रैक दंगल, जिसे आवाज दी है दलेर मेहंदी ने। इसके गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं प्रीतम। जमशेदपुर में आज गर्मी अपने तेवर में नजर आ रही है। दोपहर के समय तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था, इसलिए पानी पीकर खुद को हाइड्रेट रखें और धूप से बचें। देश में सिर्फ गर्मी का ही नहीं बल्कि क्रिकेट के जुनून से भरे आईपीएल का मौसम भी चल रहा है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच का मैच काफी रोमांचक था। चेज मास्टर विराट कोहली ने तूफानी शतक जड़ा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 6 विकेट से जीतकर अंक तालिका में पहले पायदान पर पकड़ बनाई। आज पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच का मुकाबला HPCA स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। माननीय प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सोना कम खरीदें, ईंधन का उपयोग सोच समझ कर करें। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का कहना है कि हमारे देश के पास पेट्रोलियम, CNG और डीजल का उचित स्टॉक उपलब्ध है। अफवाहों से बचें, पेट्रोल पंप की लंबी लाइनों से बचें। श्री वीडी सतीशन केरला के नए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। दिन अब पूर्णता की ओर है और हम संध्या की दहलीज पे खड़े हैं। आसमान अब नारंगी रंग से सजने लगा है। इस सुनहरे शाम को और सुरमई बनाने के लिए सुनिए एक मधुर गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म जब वी मेट का गीत तुमसे ही, जिसे गाया है मोहित चौहान ने। इसके गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार प्रीतम है। मैं हूं आयुषी झा और अब आपसे विदा लेने की अनुमति चाहती हूं। हम फिर मिलेंगे। आप रहिए नेगेटिविटी से दूर और पॉजिटिविटी से भरपूर, और सुनते रहिए आकाशवाणी जमशेदपुर FM 102.4 MHz पर। नमस्कार।

ये थी आज की युववाणी FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ। शाम के ठीक 5:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्रमिक बंधुओं के लिए कार्यक्रम कल कारखाने।

0: कार्यक्रम कल कारखाने सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाइयों को मालती का नमस्कार। श्रमिक श्रोताओं, आधे घंटे के इस कल कारखाने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: कार्यक्रम कल कारखाने में आप सभी श्रोताओं का स्वागत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा से। श्रोताओं, हम सब की सोच ही सफलता की नींव है, या यूं कहिए कि आपकी सकारात्मक सोच ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों से चलता है। एक व्यक्ति जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है, इसलिए अपनी सोच हमेशा सकारात्मक और उच्च रखनी चाहिए। सफलता हमारे बीच की दूरी ज्यादा नहीं होती, सिर्फ आपका जज्बा और आपकी पक्की सोच ही आपको सफल बनाती है। आप नकारात्मकता को त्याग देते हैं और स्वयं को इस योग्य समझते हैं कि मेहनत करने पर आप सब हासिल कर लेंगे। कई अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि सकारात्मक दृष्टिकोण सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करने में मदद करता है। हर चीज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने से आप जीवन में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मकता हमें तनाव मुक्त रखती है और हम सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। सही निर्णय ही आपको सफलता तक पहुंचने में मदद करता है। श्रोताओं, सकारात्मक सोच के लिए वातावरण का होना बहुत जरूरी है। आप उन लोगों से बचें जो आपको नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ें, नियमित जीवन अपनाएं एवं अपनी जीवन शैली में नियमितता लाएं। योग, ध्यान, प्राणायाम एवं एक्सरसाइज आदि को अपनी जीवन शैली में अवश्य शामिल करें, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे अंदर सकारात्मकता लाती हैं। जीवन को उत्साहपूर्ण तरीके से एवं सहज होकर बिताएं, न तो किसी के से प्रभावित हों और न ही किसी को प्रभावित करें। आपका सकारात्मक सोच ही आपकी मजबूती है और आपकी अच्छी सोच ही एक दिन आपको सफल इंसान बना देती है। आप अपनी सोच में बदलाव लाकर जीवन में सफल हो सकते हैं, इसलिए सतत जागरूक रहिए, सकारात्मक बनिए और तनाव मुक्त रहिए।

0: आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के

इस संघर्ष और सफलता का साक्षी है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

फिल्म हमराज का ये गीत था। महेंद्र कपूर की आवाज़ थी, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत था रवि का। श्रोताओं, हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जो हर वक्त धड़कता है, हम जगे हुए हों या फिर सोए हुए हों, उसकी धड़कन कभी विश्राम नहीं करती, वो है हमारा दिल। जी हाँ, दिल एक ऐसा अंग है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इससे दिल लगी ना हो जाए, इसलिए आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर पार्थो की ये भेंटवार्ता। विषय है दिल से न करें दिल लगी। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पार्थो और बातचीत कर रही हैं स्नेहलता। तो आइए सुनते हैं

0: श्रोता साथी, दिल हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है, जिससे शरीर को अपने दैनिकचर्या के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त होता है। और इसके धड़कने के तो हम सब कायल हैं। इस पर कई किस्से, कहानियां, कविताएं, शायरी हम सब ने सुन रखी है, सुनते रहते हैं। कहते हैं, हार भी खूबसूरत होती है, कभी दिल हार कर तो देखिए। बहरहाल श्रोताओं, आज हम किस्से कहानियों की बात नहीं करते, आज हम जानते हैं दिल से संबंधित परेशानियों को। दिल से संबंधित जानकारियों को हम एकत्रित करेंगे शहर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पार्थ चौधरी से, जिसे आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हम बात करेंगे दिल से ना करे दिल लगी इस विषय पर। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे न्योता देने के लिए इस विषय पर बात करने।
0: तो डॉक्टर साहब, प्रश्नों को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे शरीर में हृदय की क्या भूमिका होती है और किन कार्यों की जिम्मेवारी होती है इस पर?
1: हृदय हमारे शरीर में एक पंप की तरह है
0: जी।
1: हमारे शरीर में दो तरीके का रक्त प्रवाह होता है, एक होता है इम्प्योर और एक होता है प्योर। तो सर्वप्रथम हृदय में इम्प्योर रक्त जो कि शरीर के विभिन्न हिस्सों से पहुंचता है, हृदय उसे पंप करके लंग्स में पहुंचाता है, जिसे फुसफुस कहते हैं। वहां से शरीर में ऑक्सीजन रक्त में आता है और शरीर का जित कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के सहारे बाहर निकलती है। और जो स्वच्छ रक्त होता है जिसमें पोषक तत्व होता है, हृदय इस पोषक रक्त को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाता है, जिससे शरीर का हर हिस्सा सही या सुचारू रूप से कार्य कर सके। तो देखा जाए तो हमारा पूरा शरीर हृदय के पर डिपेंडेंट है।
0: अगला प्रश्न आपसे ये डॉक्टर साहब कि हृदय संबंधी परेशानियां जो हो रही हैं, उसके कारण क्या हैं?
1: एक्चुअली हृदय संबंधी जो सबसे कॉमन परेशानी है
0: जी,
1: जो इस वक्त हर कोई परेशान है, वो है हार्ट अटैक, हृदयाघात, हार्टों की नस का ब्लॉक होना
0: जी।
1: ये सबसे बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। मतलब हमारे लिए ये जो परेशानी थी पहले 60 से 70 साल की उम्र में देखा जाता था, आज ये परेशानी हम 30 साल, 20 साल, 40 साल की उम्र में लोगों को देख रहे हैं। इससे नुकसान क्या हो रहा है? हम इस वक्त एक विश्व के हिसाब से हम एक डेमोग्राफिक एडवांटेज में है। डेमोग्राफिक एडवांटेज का मतलब हमारी एक बहुत बड़ी संख्या यूथ है, लेकिन यही यूथ अगर हृदय संबंधी परेशानियों से ग्रसित होंगे तो हम एक बहुत बड़ा हिस्सा खो देंगे, क्योंकि मृत्यु हो जाएगी, वो काम नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो मुख्य हृदय संबंधी परेशानी यही है, जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। हमारा यूथ जो सिगरेट का सेवन कर रहा है, हमारे पूर्वज जिनके एक हेल्दी लाइफस्टाइल थी, हम सुबह दौड़ते थे, भागते थे, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, ये बिल्कुल गायब हो चुका है। मोबाइल से अटैच रहना, दौड़ना नहीं, काम नहीं करना, पार्टियां करना, सिगरेट पीना, मांस मदिरा, हाई कोलेस्ट्रॉल वाला फूड का सेवन, ये सब मिलके हमें इन हृदय संबंधी जो मुख्य परेशानी है जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, उसकी ओर धकेल रही है। हालांकि इसके अलावा हृदय संबंधी और भी परेशानियां होती है, जैसे रिदम डिसऑर्डर, जिसमें आंख के आगे अंधेरा आना, चक्कर आना हो सकता है। बहुत से कंजनाइटल डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें हम देखें कि अचानक से कोई एथलीट दौड़ते हुए कार्डियक अरेस्ट हो गया। रूमेटिक हार्ट डिसऑर्डर, जिसको बचपन में इन्फेक्शन के कारण वॉल्व खराब हो जाना, ऐसे बहुत से और भी परेशानियां होती है, लेकिन मुख्यतः हम इस परेशानी से अभी पीड़ित है।
0: मतलब हमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं छोड़ना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है।
1: मतलब आप सभी से अनुरोध है कि हमारी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा करें, ताकि हम इनसे, ऐसी परेशानी है, मतलब सोच के दुख लगता है कि कितने कम उम्र के लोग हार्ट अटैक लेके आ रहे हैं।
0: बिल्कुल, आजकल ये देखा जाता है कि सुबह में बात हुई थी, वे बिल्कुल स्वस्थ थे, और अचानक उनके डेथ की बात सुनाई देती है, उनके मृत्यु की बात सुनाई देती है। तो ये कारण हमारा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना, लाइफस्टाइल में खान पान, ये सब,
1: और
0: ये
1: साथ में 40 के ऊपर अब हो तो साल में एक बार हृदय की जांच करवाए, सिर्फ इको टीएमटी दो टेस्ट से ही पता चले,
0: रेगुलर
1: साल में
0: नियमित आप जांच,
1: 40-45 साल के ऊपर है तो, स्पेशली अगर आप डायबिटिक है तो साल में एक बार जरूर जांच कराए
0: जी। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ेंगे और आपसे ये जानेंगे कि हृदय संबंधी रोगों में सामान्य और विशेष ऐसी बीमारियां होती हैं, और यदि होती हैं तो इनके लक्षण क्या क्या हैं?
1: वही जो मैं आपसे कहा, सामान्यतः जो हम फेस करते हैं हृदय संबंधी बीमारी है, वह है हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, उसके बाद है कार्डियक सिंकोप, रूमेटिक हार्ट डिजीज, ये चार परेशानियां मुख्यतः हम इनकाउंटर करते हैं। हार्ट अटैक के लक्षण आप सभी जानते हैं, हालांकि ये लक्षण बहुत ही वैरी करते हैं। हम कई बार देखते हैं कि बूढ़े आदमी जिनको कोई परेशानी नहीं, अचानक से सांस फूलते हुए आ रहे हैं, देखा गया कि उन्हें बड़ा हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक के लक्षण दांतों में दर्द से लेके, गर्दन में दर्द से लेके, पीठ में दर्द से लेके, गैस की शिकायत, लेफ्ट हैंड में पेन, चलने में भारीपन लगना, चलने में सांस फूलना, ये सभी जो लक्षण है ये हार्ट अटैक के हो सकते हैं। इसके बाद आंख के आगे कुछ सेकंड के लिए अंधेरा छा जाना, चक्कर खा के गिर जाना, ये सब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, जिसे हम कहते हैं कि हार्ट में करंट नहीं जा रहा, उसके कारण हो सकते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज जो कि बचपन में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है और जैसे ही इंसान बड़ा होता है उसके वॉल्व सिकुड़ जाते हैं, इसमें भी सांस फूलना एक मुख्यतः लक्षण होता है। बचपन में इसमें जॉइंट पेन होता है। हार्ट फेलियर के लक्षण होते हैं पैरों में सूजन आना, सांस फूलना, सोते समय सांस फूलना, सोते समय खांसी होना, ये सब हार्ट फेलियर के लक्षण है। ये सामान्यतः हृदय संबंधित बीमारी है। इसके अलावा रेयर बीमारी है जिसे हम कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसमें बीमारियां जो होती है ये अनुवांशिक होती है, मतलब समझ लीजिए परिवार में चार सदस्य है तो पता चला कि इनके पिताजी की बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई थी, या पिताजी की फैमिली में और भी लोगों की बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई थी, तो उनका इको किया तो पता चला उनकी हार्ट की मांसपेशियां अत्यधिक मोटी है, इसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियक मायोपैथी कहते हैं। या फिर कई सारी अनुवांशिक बीमारियां होती जिसमें हार्ट के जो वायर्स है या चैनल्स है जिससे कि पोटेशियम सोडियम आना जाना करते, उसकी अबनॉर्मलिटी से, कंडक्शन डिस्टर्बेंसेस से अचानक से मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ही रेयर है, एक बाई वन लैक। जैसे हम सुनते हैं ना कई बार एथलीट खेल रहा था अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो गया, वो तो हेल्दी था
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: पता चला उसी वो इस सब अनुवांशिक बीमारियों से ग्रसित था, जिसे डायग्नोस करना काफी कठिन होता है। इसके लिए बस यही है, अगर आपके परिवार में कम उम्र में किसी की भी मृत्यु होती है जैसे माँ की तरफ या पिता की तरफ, तो आप कंप्लीट हार्ट चेकअप कराइए, इससे कई बार इन बीमारियों का पता चलता है।
0: ये हमने बीमारियों की बात की और उनके लक्षण की बात की, लेकिन दिल हमें परेशान न करे, इनके लिए किन किन सावधानियों को हमें अपनाना चाहिए?
1: ये बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, किंतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हालांकि इसका आंसर मुझे लगा हम में से बहुतों को पता है, लेकिन फिर भी हम जानने के बावजूद उसको फॉलो नहीं करते। शायद ये मेरे लिए भी सही है, मतलब इसका मैं
0: शुरुआत में जो हमने बात की थी
1: जी, इसका मैं सिंपल सा आंसर दूं कि अगर आप जिम नहीं जाना चाहते हैं, आप आलसी है या किसी कारणवश नहीं रख जा सकते, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, घर के नीचे कम से कम 90 से 120 मिनट प्रति सप्ताह हम पैदल चल सकते हैं। हम अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं सीढ़ी का उपयोग कर सकते हैं। हम कम से कम सिंपल भाषा में अगर हमारे घर चार लोग हैं तो 2 किलो से ज्यादा तेल का उपयोग ना करें। हम खाने में नमक की कम मात्रा में यूज करें। हम बाहर का ऑयली खाना कम से कम खाएं। हम स्वास्थ्य खाना खाएं जिसमें खूब सारी हरी सब्जियां, फल, मोटा अनाज शामिल हो। तो हम इतना तो कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, ये तो हम बात कर रहे थे कि परेशानी ना हो, लेकिन यदि हम दिल संबंधी बीमारी, हृदय संबंधी बीमारियों से ग्रसित हो जाएं, तो फिर क्या सावधानियां हमें अपनानी चाहिए डॉक्टर साहब?
1: देखिए, दिल की बीमारियां एक तरीके से देखा जाए तो दूसरी बीमारियों की तुलना में हमारे लिए वरदान है अगर ये 60 से 65 साल की उम्र में हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिल की बीमारी ही ऐसी बीमारी है जिसका कंप्लीट इलाज संभव है। वनस्पत किडनी की बीमारी या नर्व की बीमारी या ब्रेन की बीमारी, क्योंकि देखिए ब्रेन की बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। किसी को लकवा हो गया तो हमेशा के लिए हो गया, किडनी खराब हो गई तो हमेशा के लिए खराब हो गई। हार्ट की बीमारियों में एक ही चीज अच्छी है कि आप मेरे पास टाइम पे आए, अगर आपको हार्ट अटैक हुआ मैंने तुरंत उसका ट्रीटमेंट किया, अब जिंदगी भर अच्छे रहेंगे
0: जी।
1: तो पहली बात मैं यही कहूंगा कि प्लीज किसी भी चीज को इग्नोर ना करें। आंख के आगे अंधेरा आ रहा, छाती में दर्द हो रहा, क्योंकि आज के जमाने में हम अगर किसी मरीज को खोते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि मेरे पास टाइम पे नहीं आ रहा है। आज ऐसा नहीं है कि इलाज संभव नहीं है, हार्ट की हर बीमारी का इलाज संभव है। हम किसी को सिर्फ इसीलिए खोते हैं कि टाइम पे नहीं आता है। तो बस मेरा यही अनुरोध है कि सेल्फ डायग्नोस ना करें, आपके डॉक्टर पे भरोसा रखें और उसकी बात सुने।
0: और डॉक्टर साहब आगे बढ़ेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिल से संबंधित बीमारियां जो हैं उनका उपचार क्या है?
1: दो तरीके से, एक होता प्रिवेंशन और एक होता क्योर। प्रिवेंशन के लिए हमने ये बात की है, हम हमारी जीवन शैली को इतना अच्छा रखें कि हमें दिल की बीमारी की तरफ जाना ही ना पड़े। अगर हमारी जीवन शैली अच्छी रहेगी, हम स्मोक नहीं करेंगे, शरीर फिट रहेगा, खान पान अच्छा रहेगा, तो हम उस तरफ जाएंगे ही नहीं। और अगर उसके बावजूद अगर वो हो जाती है जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है, जो मुख्यतः एक तिहाई जनसंख्या जो है हमारी ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, और उसमें से आधे लोग दवाई लेते ही नहीं है। अगर हम ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, टाइम से दवाई ले, वो हमें फ्यूचर में हार्ट अटैक से बचाएगा। अगर हम डायबिटिक है, अपनी जीवन शैली संयमित रखे, समय पे दवाई ले, वो हमें आने वाले हार्ट अटैक से बचाएगा, आने वाले हृदय संबंधी बीमारी से बचाएगा। तीसरा है, अगर हम हृदय संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो ही गए हैं, अगर आपका हार्ट का पंपिंग फंक्शन अच्छा है तो आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। अगर आपका हार्ट का पंपिंग फंक्शन कम है तो हमारी जीवन शैली में डॉक्टर के कहे अनुसार आपको सुधार करना होगा, टाइम पे दवाई लेनी पड़ेगी। तो देखा जाए तो हृदय रोग, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि दूसरे रोग के कंपेयर में बहुत अच्छा है, इसमें सिर्फ आपको अपनी जीवन शैली में सुधार करना है, खान पान को संयमित रखना है, बाकी आप हर काम कर सकते हैं।
0: मतलब यदि आप बीमारी से ग्रसित हो भी जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप विशेषज्ञ के पास जाइए,
1: सही इलाज करा,
0: जो भी सलाह दिया जाता है
1: सही इलाज करें, खुश रहें, बिल्कुल यही हृदय बीमारी है जो पूर्णतः क्यूरेबल है दूसरे बीमारियों के कंपेयर में।
0: तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी दिल से संबंधित, लेकिन अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वे अपने दिल को स्वस्थ रख सकें, उसकी स्वस्थता बरकरार रख सकें?
1: एक्चुअली मैं कई जगह पे गोष्ठी में या संवाद में शामिल हो चुका हूँ, और इसका बस मैं इतना ही कहूँगा कि चूंकि दिल की बीमारियों में सिम्टम्स बहुत कम होते या मिनिमल होते हैं, एक बड़ा हार्ट अटैक मैंने बहुत बड़ा दर्द नहीं होता है ना, या फिर अगर आप हार्ट फेलियर से पीड़ित है तो आपको ऐसे बहुत भयंकर सिम्टम्स नहीं आएंगे, उसके बावजूद आपकी मृत्यु हो सकती है या सीरियस कुछ हो सकता है,
0: जिसकी वजह से लोग इसे हल्के में लेते हैं।
1: तो बस इसलिए इसे हल्के में ना ले। मेरे साथ प्रॉब्लम यही आती है कि लोगों को एक्सप्लेन करना कि आप एक सीरियस बीमारी से ग्रसित है लेकिन इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसे सिम्टम से ना तोले, कि बहुत बड़ा दर्द मतलब बहुत बड़ा

कल कारखाने, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। शाम के 6 बजने ही वाले हैं श्रोताओं, थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी उसके बाद अंग्रेजी में। समाचारों के लिए कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

0: इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांवों में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

0: आप सुन रहे थे नागपुरी लोकगीत कलाकार थे मेघनाथ महतो एवं साथी। इसी के साथ झारखंड के लोकगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: झारखंड के लोकगीत ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है FM 102.4 MHz पर। शाम के 6:20 होने ही वाले हैं श्रोताओं, कुछ ही क्षणों में संस्कृत में समाचार सुनिएगा। प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
2: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। वैश्विक अनिश्चिततायाः आर्थिक समाह्वानानां च मध्ये ब्रिक्स देशाः रचनात्मिकां भूमिकां निर्वहन्तीति भारतेन दृढतया प्रतिपादितम्। नवदिल्ल्याम् अद्य द्विदिवसीय ब्रिक्स विदेश मंत्रिणां सम्मेलनस्य आरंभः अभवत्।

ढलती शाम पशुओं के द्वारा किया गया पदचाप जो घर को वो लौट रहे हैं, साथ ही धीरे धीरे तापमान कम होता हुआ बदलता मौसम। इसी मौसम के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के साथ मैं हूं आपका वही जाना पहचाना दोस्त राजेश जोहार।

किसान भाइयों, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखने में प्रवासी पक्षियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रवासी पक्षी फल और बीज खाते हैं और लंबी दूरी तय करने के बाद उन्हें अपनी बीट के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में फैलाते हैं। इससे पौधों की विविधता बनी रहती है और वनों के पुनर्जन्म में मदद मिलती है। ये पक्षी अपने प्रजनन या प्रवास के दौरान बड़ी मात्रा में कीड़ों और कीटों का सेवन करते हैं, जिससे फसलों और प्राकृतिक वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाने वाली कीट की आबादी नियंत्रित रहती है। प्रवासी पक्षी फूलों के रस का सेवन करते समय परागण में मदद करते हैं, जो पौधों की प्रजनन प्रक्रिया के लिए जरूरी है। कृषक मित्रों, ये पक्षी एक इकोसिस्टम से दूसरे में पोषक तत्वों को स्थानांतरित करते हैं। साथ ही प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति से संबंधित क्षेत्र के वातावरण की सेहत का पता भी चलता है। प्रवासी पक्षी खुद शिकारियों के लिए भोजन का स्रोत बनते हैं और इस प्रकार पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। भारत में हिमालय के पार से आने वाले पक्षियों में साइबेरिया सारस, अबाबिल, नीलकंठ, बगुला और विभिन्न प्रकार के बत्तखें शामिल हैं, जो सर्दियों में ठंडे देशों से गर्म इलाकों में प्रवास करती है। झारखंड के उधवा झील पक्षी अभयारण्य, साहिबगंज और राज्य के विभिन्न जलाशयों में सर्दियों के दौरान मंगोलिया, साइबेरिया और यूरोप से लगभग 25,000 से 30,000 से अधिक प्रवासी पक्षी आते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व में स्थित कमलदाह झील, मसानजोर डैम, चांडिल डैम और हटिया डैम जैसे जगहों पर ये विदेशी मेहमान आमतौर पर नवंबर से मार्च के बीच आते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती पर निर्भरता बढ़ाकर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना एक टिकाऊ और प्रभावी तरीका है। रासायनिक उर्वरकों के बजाय प्राकृतिक इनपुट का उपयोग करके मिट्टी के स्वास्थ्य, सूक्ष्म जीवों की गतिविधि और पोषक तत्वों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और खेत की मिट्टी का मिश्रण है जीवामृत, जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाता है और पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराता है। ढेंचा, सनई या लोबिया जैसी फसलों को उगाकर उन्हें फूल आने से पहले खेत में ही जोत देने से एक अच्छा उर्वरक बनता है।

यह नाइट्रोजन का पावर हाउस है और मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। पुरानी गोबर की खाद और कंपोस्ट का उपयोग करने से मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। एक ही खेत में अलग अलग फसलें अदल बदल कर बोने से पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। फलीदार फसलों हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। प्राकृतिक खेती अपनाकर न केवल मिट्टी की खोई हुई उर्वरता वापस पाई जा सकती है, बल्कि उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार किया जा सकता है।

0: प्रिय जिला वासियों जोहार, मैं नीतीश कुमार सिंह उपायुक्त सरायकेला खरसावां समस्त जिले वासियों से अनुरोध करता हूँ कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी। धन्यवाद।
1: किसान भाइयों, पालतू पशुओं के क्या क्या नस्ल होते हैं और फिर उन नस्लों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आइए सुनते हैं भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर संजय कुमार रत्नागर और इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी अनुपमा कुमारी।
2: संजय कुमार रत्नाकर जी, जिनसे आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे पालतू पशुओं के उन्नत नस्ल और उनकी देखभाल के बारे में। तो डॉक्टर रत्नाकर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब। हमारे कृषक भाई बहन खेती के अलावा पशुपालन का काम करते हैं
3: जी,
2: जो उनके लिए अतिरिक्त आमदनी का स्रोत होता है।
3: हाँ।
2: तो इसके लिए जरूरी है कि उनके बारे में, उनके रख रखाव के बारे में जानकारी रखें। तो हाँ। आप हमारे श्रोताओं को सबसे पहले बताएं कि पालतू पशुओं के रूप में आम तौर पर किन किन पशुओं का उपयोग किया जाता है।
3: आम तौर पर कई सारे पशुओं का उपयोग जो की है हम विभिन्न कार्यों के लिए पालतू पशु के रूप में करते हैं।
2: हाँ।
3: जो किसान भाई ग्रामीण परिवेश में इस्तेमाल करते हैं।
2: हाँ।
3: उनमें है गाय, भैंस, बकरी, सुअर, ऊंट, भेड़, घोड़ा, गधा, खच्चर और पोल्ट्री, जिसमें मुर्गी, बत्तख आदि आते हैं। झारखंड में खास तौर पे जो किसानों के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं वो गाय हैं, भैंस, बकरी, सुअर और कुछ मात्रा में भेड़ भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और पोल्ट्री में खास तौर पे मुर्गी और कुछ लोगों द्वारा बत्तख का भी इस्तेमाल किया जाता है
2: जी। और अब यदि हम इनकी उपयोगिता के बारे में बातें करें तो उन्नत नस्ल के पशुओं की क्या क्या उपयोगिता है।
3: पशुओं का जहाँ तक नस्ल का बात है तो नस्ल के अनुसार पशुओं को तीन तरह के श्रेणी में विभक्त किया जाता है। एक होते हैं देसी नस्ल
2: जी,
3: और एक होते हैं विदेशी नस्ल, और एक तीसरा श्रेणी होता है संकर नस्ल
2: जी।
3: संकर नस्ल जो होता है वो दो प्रकार के नस्लों का, जैसे विदेशी और देसी नस्लों को मिलाकर
2: जी
3: वो उसको संकर नस्ल का बनाया जाता है
2: जी।
3: और वो खास तौर पे जो लेबोरेटरी है, हमारे रिसर्च सेंटर है, वहाँ बनाया जाता है, और बनाने के बाद उस नस्ल को ग्रामीणों को उपयोग के लिए दिया जाता है।
2: तो ये तो हुई उपयोगिता की बात
3: जी।
2: इन पशुओं के उन्नत नस्ल के विषय के बारे में हमारे किसान भाई बहनों को आप बताएंगे।
3: हाँ। तो जैसे कि उन्नत नस्ल है तो देसी नस्लों में भी कई सारे उन्नत नस्ल के हैं। गाय में सिंधी है, साहिवाल है, गीर है, थारपारकर है, ये सब देसी नस्ल हैं। बचौर हैं, खिलाड़ी हैं, अमृत महल हैं, ये सब देसी नस्ल के गाय हैं। और जो विदेशी नस्ल के गाय जो होते हैं खास तौर पे भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें जर्सी है, होल्स्टीन फ्रीजियन है, आयरशायर है और ब्राउन स्विस हैं। इसमें जो संकर नस्ल है हमारे यहाँ संकर नस्ल के, उसमें इस तरह से किया जाता है कि विदेशी नस्ल के जो गाय हैं उनमें दूध का उत्पादन ज्यादा होता है। परंतु यहाँ के जो आबोहवा है, जो यहाँ का वातावरण है, उसके लिए वो सुटेबल नहीं होते हैं, उसके अनुरूप नहीं होते हैं, इसलिए उनको अनुरूप बनाने के लिए ऐसा किया जाता है कि देसी नस्ल जैसे सिंधी के साथ में होल्स्टीन फ्रीजियन का संकर किया जाता है, साहिवाल नस्ल के साथ में होल्स्टीन फ्रीजियन या जर्सी का संकर किया जाता है
2: जी।
3: इस प्रकार से संकर नस्ल का इजाद किया जाता है, और ये नस्ल जो की है यहाँ के हिंदुस्तान के वातावरण में अच्छे सुटेबल होते हैं, अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं
2: जी।
3: और उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है,
2: नहीं
3: उनकी रख रखाव आसान हो जाता है, और दूध भी हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। उसके अलावा भैंस के जो उन्नत नस्ल है तो भैंस के साथ ये है कि भैंस मुख्यतः एशियाई देशों में ही पाए जाते हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा भारत में ही होते हैं।
2: अच्छा।
3: तो उनके जो भी अच्छे नस्ल हैं, सबसे अच्छे नस्ल हैं, वो भारत में ही हैं। उनमें मुर्रा नस्ल
2: जी,
3: नील रावी नस्ल
2: जी,
3: सूरती नस्ल, जाफराबादी नस्ल
2: जी,
3: मेहसाना नस्ल
2: जी,
3: भदावरी नस्ल, नागपुरी नस्ल, ये सब भैंस के विभिन्न नस्ल हैं जो अच्छे नस्ल हैं और अच्छा दूध देते हैं। इसके बाद मैं बताता हूँ सुअर के बारे में। सुअर में जो विदेशी नस्ल हैं, विदेशी नस्ल के लार्ज यॉर्कशायर, मिडिल यॉर्कशायर, वर्कशायर और हैम्पशायर, ये सारे नस्ल विदेशी नस्ल के हैं। और देसी नस्ल जो है वो देसी एक तरह के होते हैं जो काले रंग के होते हैं, ये विदेशी नस्ल जो की हैं आमतौर पे सफेद होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सुगर खाने वाले लोग हैं उनको काला सुगर ज्यादा पसंद होता है।
2: जी जी।
3: इस कारण से हमारे यहाँ रांची विश्वविद्यालय में, रांची में जो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, वहाँ पे एक नस्ल का इजाद किया गया
2: जी।
3: वो एक टेम्पवर्थ और देसी नस्ल को मिलाकर उसका नाम है TND ब्रीड। इसका जो एडल्ट वेट है, इसका वजन लगभग 200 केजी के आसपास हो जाता है।
2: अच्छा, और इसको रखेंगे क्या, कोई विशेष तौर तरीके से इसे रखा
3: नहीं
2: जाता?
3: इसे देसी नस्ल का केसुअर को जिस तरह से रखा जाता है उसी प्रकार से इसे रखा जा सकता है। इसलिए इसके रख रखाव में ज्यादा परेशानी नहीं होती है और बीमारियों से लड़ने की भी इनकी क्षमता अच्छी होती है।
2: डॉक्टर साहब, आमतौर पर सुनने में आता है कि गायों में कोई कोई गाय ऐसी होती है जिन्हें पंखे की जरूरत होती है, ठंडे स्थान पर रखना चाहिए, ऐसा सुनने में आता है और देखे
3: हाँ,
2: भी
3: अगर,
2: है।
3: हाँ, अगर हम
2: जी,
3: ये विदेशी नस्ल की, प्योर विदेशी नस्ल की गाय अगर हम यहाँ रखते हैं
2: जी,
3: तो निश्चित रूप से उनके लिए हमें बहुत ज्यादा व्यवस्था करना पड़ता
2: जी,
3: है
2: जी,
3: जैसे कि ये जर्सी नस्ल है या होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल है, ब्राउन स्विस नस्ल है, ये सब ठंडे देश के हैं, तो वो यहाँ के क्लाइमेट में रखने के लिए उनके लिए आपको गर्मी के समय में खासकर बहुत ज्यादा परेशानी होती
2: थोड़ा
3: है,
2: थोड़ा खर्चीला होता है।
3: हाँ, खर्चीला भी होता है और परेशानी भी होती है। इसी चीज को खत्म करने के लिए, ये परेशानी को कम करने के लिए जो है संकर नस्ल का इस्तेमाल किया जाता है। पशु के पालन में जो सावधानियां होती है उस बहुत आवश्यक होता है ये ध्यान रखने का। वैक्सीनेशन, वेंटिलेशन, न्यूट्रिशन, ये तीन चीज का विशेष हमें ध्यान रखना पड़ता है
2: जी।
3: तो इससे क्या होता है कि जैसे जहाँ भी हम पशु को रख रहे हैं तो उसमें जो बीमारियां लगती है उसके वैक्सीन बहुत सारा
2: टीकाकरण
3: जो है उसका
2: जी जी,
3: वो करना पड़ता है। इससे बीमारियों से बचाव होगा और क्षति से बचेगा
2: जी जी। और अब अंत में डॉक्टर साहब, आप हमारे कृषक भाइयों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
3: कृषक भाइयों को और अन्य लोगों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पशुपालन व्यवसाय है वो किसी भी देश के या राज्य के समृद्धि के लिए ये सबसे बड़ा मानक होता है कि पशुपालन व्यवसाय वहाँ कैसा है। और पशुपालन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो कि हर तबके के लोग कर सकते हैं, गरीब से गरीब लोग भी कर सकते हैं और अमीर से अमीर लोग भी कर सकते हैं। अगर ये व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाए तो अधिक से अधिक समृद्धि बढ़ेगी और हर स्तर के लोगों का विकास होगा, इससे पूरे समाज का और देश का विकास होगा।
2: डॉक्टर साहब, आप पालतू पशुओं के उन्नत नस्ल के बारे में और उनके देखभाल के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पालतू पशुओं के उन्नत नस्ल व उनकी देखभाल, इसी विषय पर आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। भेंटवार्ता कर रहे थे डॉक्टर संजय कुमार रत्नाकर और इनसे बातचीत कर रही थी हमारी सहयोगी अनुपमा कुमारी।

कृषक मित्रों, गर्मा फसलों में कीट प्रबंधन के लिए सही समय पर सही उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तेज तापमान में कीटों का प्रजनन और हमला तेजी से होता है। बुआई के समय कीट प्रतिरोधी या सहनशील किस्म के बीजों का चयन करें। बुआई से पहले बीजों को इमीडाक्लोप्रिड या अन्य अनुशंसित कीटनाशकों से उपचारित करें, इससे शुरुआती कीटों से बचाव होता है। पिछले सीजन के कीड़ों को नष्ट करने के लिए फसल बदल कर बोएं। रात में उड़ने वाले कीड़ों को पकड़ने के लिए खेत के पास प्रकाश प्रपंच लगाएं। यह रासायनिक कीटनाशकों का अच्छा विकल्प हो सकता है। गर्मियों में फसलों में 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि नमी की कमी से कीटों का प्रकोप बढ़ने की संभावना होती है। खेतों को साफ रखें, क्योंकि ज़्यादा खरपतवार कीड़ों के आश्रय स्थल बन जाते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप चाहें तो इन उपायों को समय पर अपनाकर गर्मा फसलों को कीटों के प्रकोप से बचा सकते हैं और अच्छी उपज भी ले सकते हैं।

किसान भाइयों, तापमान को देखते हुए किसान तैयार सब्जियों की तुड़ाई सुबह या शाम को करें तथा इसके बाद इसे छायादार स्थान में रखें। भिंडी की फसल में तुड़ाई के बाद यूरिया 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालें तथा माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इथियन 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। बैंगन तथा टमाटर की फसल को प्ररोह एवं फल छेदक कीट से बचाव हेतु ग्रसित फलों तथा प्ररोहों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पिनोसेड कीटनाशी 48 EC 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। इस मौसम में किसान अपनी मिट्टी की जांच किसी प्रमाणित स्रोत से करवाएं और जहां संभव हो अपने खेत का समतलीकरण करवाएं।

किसान भाइयों, बदलते मौसम विशेषकर गर्मी से बरसात और बरसात से सर्दी के दौरान पशुओं में संक्रामक मौसमी बीमारियों का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। नमी, कीचड़ और बदलते तापमान के कारण बैक्टीरिया और वायरस तेजी से पनपते हैं। गलघोटू, जिसमें पशु को तेज बुखार होता है और गले में सूजन आ जाती है जिसे सांस लेने में दिक्कत होती है। लंगड़िया बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो मिट्टी से फैलने वाला जीवाणु रोग है, जिसमें पशु लंगड़ा कर चलता है और जोड़ों में सूजन आ जाती है। खुरपका मुहपका वायरस से फैलने वाला रोग है जो खुरों और मुंह में छाले कर देता है। नमी और कीचड़ के कारण पशु के थन में सूजन और संक्रमण हो जाता है, जिससे दूध उत्पादन घट जाता है। पीलिया, फिलेरिया और परजीवी संक्रमण जो टिक्स के कारण फैलते हैं गर्मी के बदलाव में आम है। नमी के कारण पेट में कीड़े की समस्या बढ़ जाती है। गलघोटू के लिए मई जून में आप टीकाकरण करवा सकते हैं। लंगड़िया के लिए भी इसी मौसम में टीकाकरण किया जा सकता है तथा खुरपका मुहपका के लिए हर 6 महीने में टीकाकरण करवाना जरूरी हो जाता है।

कृषि जगत, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:55 हुए हैं श्रोताओं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ठीक 7 बजे होगा प्रादेशिक समाचार और उसके बाद 7:10 पर कार्यक्रम जिले में आजकल। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुनिए।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण का अभियान होगा शुरू। झारखंड सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश होंगे शामिल। झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस हिरासत, जेल में मौत और रेप की घटनाओं में न्यायिक जांच को किया अनिवार्य। झारखंड में अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधान

0: कानून को लागू करने के लिए मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची में किया ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ। हजारीबाग कोयला खनन क्षेत्र में संचालित सामुदायिक विकास परियोजना के लिए सीसीएल को मिला ग्रीन टेक सीएसआर इंडिया प्लैटिनम अवार्ड। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से, शाम 7:30 बजे से मैच होगा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। तीसरे चरण का अभियान झारखंड सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा। इस घोषणा के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 23 मई 2026 को सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसमें संबंधित बीएलओ के नाम और मोबाइल नंबर भी उपलब्ध रहेंगे। राज्य में प्रत्येक पात्र मतदाता का घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। इस संबंध में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह अपर सचिव सुबोध कुमार ने बताया कि झारखंड में वर्तमान में कुल 2,64,89,777 मतदाता हैं तथा एसआईआर कार्य में 29,571 बीएलओ और 21,644 बीएलए लगाए गए हैं।
1: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरी सहित झारखंड में थर्ड फेज के एसआईआर का अनाउंसमेंट कर दिया है। इसी क्रम में अगले 23 मई को सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी। आप सबसे अनुरोध है कि आप अनमैप्ड सूची का अवलोकन जरूर कर लें। 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाएंगी और जाकर सत्यापन का काम करेंगी।
0: रांची में उपायुक्त सह प्रधान जनगणना पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत पर्यवेक्षकों और प्रगणकों के बीच आधिकारिक किट का वितरण किया। उन्होंने बताया कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन और मकानों के सूचीकरण प्रक्रिया 16 मई से 14 जून 2026 तक चलेगी, जिसमें प्रत्येक मकान और परिवार का डिजिटल माध्यम से विवरण संकलित किया जाएगा। उधर जामताड़ा में भी जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पहल पर पटोदिया धर्मशाला में पोर्टल के माध्यम से स्वगणना शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि चैंबर के सदस्यों के सहयोग से शिविर में आकर लोगों ने सहज ढंग से स्वगणना कार्य संपन्न किया। झारखंड उच्च न्यायालय ने अपर पुलिस हिरासत, जेल में मौत और रेप की घटनाओं में न्यायिक जांच को अनिवार्य किया है। मुख्य न्यायाधीश एम एस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अब ऐसे मामलों की जांच एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बजाय न्यायिक जांच के माध्यम से होगी। अदालत ने झालसा को एनएचआरसी की गाइडलाइन के अनुसार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने का निर्देश देते हुए वर्ष 2018 से 2025 के बीच हुई हिरासत में मौत के मामलों की रिपोर्ट भी तलब की है। कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में न्यायिक जांच नहीं हुई है उनमें संबंधित जिला जज कारण बताते हुए उच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंपेंगे। झारखंड में अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू किए जाने के लिए आज रांची में ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और जनता के बीच एक समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से नियमितीकरण ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।
2: हेमंत सोरेन की सरकार ने शहरी क्षेत्र के उन लोगों के बारे में भी गंभीरता से सोचा और उनको राहत देने का प्रयास किया। तो जनता से अपील करना चाहूंगा कि अनुमानित झारखंड के 7 लाख वैसे घर जो अनियमित हैं, वो इस योजना का लाभ लें। जो नागरिक शुल्क देकर अपने अनियमित भवनों का नियमितीकरण करना चाहते हैं, राज्य सरकार उनके मान सम्मान की रक्षा करेगी।
0: जमशेदपुर के सीएसआईआर राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सीएसआईआर एनएमएल के निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधरी ने संस्थान की उपलब्धियों और भविष्य निर्माण में अनुसंधान की भूमिका पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने समावेशी विकास के लिए उत्तरदायी नवाचार विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि तकनीक का विकास स्थानीय जरूरतों और मानव कल्याण को ध्यान में रखकर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वास्तविक तकनीकी प्रगति वही है जो मानव जीवन को बेहतर बनाए और पर्यावरण संरक्षण में सहायक हो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों को देखते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति में कमी की कोई सूचना नहीं मिली है।
3: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL को हजारीबाग कोयला खनन क्षेत्र में संचालित सामुदायिक विकास परियोजना के लिए ग्रीन टेक CSR इंडिया प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में CCL की CSR टीम ने यह पुरस्कार प्राप्त किया जो ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में कंपनी के योगदान के राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से बाहर आए। इस मौके पर उन्होंने जमानत मिलने पर न्यायालय का शुक्रिया अदा किया।
4: हमने कहा कि सबका जय होती है, नौसर का जय होकर जाएगा। आज हम बेल पर आए, न्यायालय का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारा ये दिक्कत बेल उन्होंने दिया है और आगे की जो प्रक्रिया है मैं इस बात का ही कह सकते हैं जो आज क्या हम बनाए, लेकिन हमें जो विश्वास है वो सत का जीत होती है और होगी।
0: वहीं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने आलमगीर आलम को मिली अंतरिम जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसे बाइज्जत बरी नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर कड़ी शर्तों के साथ राहत मिली है जबकि मामले की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है। झारखंड विधानसभा के पूर्व मंत्री और गोमिया के पूर्व विधायक स्वर्गीय माधव लाल सिंह का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बोकारो जिले के गोमिया स्थित साड़म पश्चिमी बोकारो नदी में आयोजित इस अंतिम संस्कार कार्यक्रम में पुलिस बल ने अंतिम सलामी दी। मौके पर उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेन्द्र प्रसाद, उपायुक्त अजय नाथ झा समेत जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और कई राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थकों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। क्रिकेट। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण का अभियान होगा शुरू। झारखंड सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश होंगे शामिल। झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस हिरासत, जेल में मौत और रेप की घटनाओं में न्यायिक जांच को किया अनिवार्य। झारखंड में अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू करने के लिए मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची में किया ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ। हजारीबाग कोयला खनन क्षेत्र में संचालित सामुदायिक विकास परियोजना के लिए CCL को मिला ग्रीन टेक CSR इंडिया प्लैटिनम अवार्ड। और IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से, शाम 7:30 बजे से मैच होगा शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता।
1: लोहरदगा जिला में जनगणना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। जिले में जागरूकता रथ भी रवाना किया गया है, जिसे डीसी संदीप कुमार मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारशिला है और इसके माध्यम से सरकार को जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार और अन्य जरूरी आंकड़े प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर योजनाएं बनाई जाती है। डीसी संदीप कुमार मीणा ने कहा कि
2: जो भी देश के नागरिक हैं वो ac.census.gov.in पर जाकर के अपना सेल्फ एनुमरेशन का फॉर्म उसको फिल कर सकती है, और उसके बाद जो कि 16 मई से लेकर के 15 जून तक का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे जितने भी एनुमरेटर्स हैं वो घर घर जाकर के गणना करेंगे, हाउस लिस्टिंग करेंगे और हाउस की सेंसस करेंगे। इसमें हम लोगों का जो आज का हरी झंडी दिखाने का जो उद्देश्य है कि जो हम लोगों ने रथ को रवाना किया है ये ब्लॉक में जाएगा, गाँव गाँव जाएगा, लोगों को जागरूक करेगा कि जो भी प्रगणक आ रहे हैं उन लोगों का सहयोग करें।
1: लोहरदगा जिला में बिजली पानी की किल्लत को लेकर भाजपा द्वारा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और घड़ा फोड़कर अपना विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भीषण गर्मी में लोग बिजली पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और राज्य सरकार खामोश बैठी है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय पंकज ने कहा कि लोहरदगा में केंद्र सरकार की नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है और आज आम जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष अजय पंकज ने कहा कि
3: जितना भी आप क्षेत्र देखिए हर जगह में पानी का त्राहिमाम किए हुए जनता, पानी यहाँ डोभा का जो होता है वहाँ से लोग पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। बिजली की स्थिति इतनी बदतर है, आया मुंह दिखाया बस भगदोगनी की तरह से यहाँ दिया जलाता है, टिमटिमाता है, फिर लाइट चला जाता है। लगातार विद्युत व्यवस्था बिल्कुल ही चरमराया हुआ है, बहुत जगह में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। आज बहुत सा ऐसा गाँव है जहाँ पर अभी तक बिजली नहीं पहुँचा पाया है, जिनको जन सेवा से कोई लेना देना नहीं है, जनता त्रस्त है। अभी स्थिति यह है, बीच में दबाव बना करके स्मार्ट मीटर लगाया गया है, स्मार्ट मीटर में लोगों को अनाप शनाप बिल आ रहा है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, जितना जल्दी हो सके जो भी स्मार्ट मीटर लगा है उनको आप हटाइए।
1: लोहरदगा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा 90 दिवसीय सघन विधिक जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। सिविल कोर्ट परिसर में पीडीजे की अध्यक्षता में जागरूकता एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मनोरंजन कुमार ने बताया कि आम जनों को उनके अधिकारों और कर्तव्य को बताने के उद्देश्य से गहन कानूनी जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। मनोरंजन कुमार ने कहा कि
4: एलईडी वैन में सारा डिस्प्ले किया जाएगा, झालसा नौसा संबंधी स्कीम्स हर गाँव गाँव में ये जाएगी, और जो लीगल राइट्स है, ड्यूटीज है, हर व्यक्ति का जहाँ भी कोई समस्या आ रही है कैसे उसको समाधान करना, सारा चीज उसमें डिस्प्ले दिया हुआ है। एलईडी जो हमारी टीम है उसमें हमारे TLVs भी रहेंगे।
1: लोहरदगा जिला में बेमौसम बरसात और आंधी तूफान से भारी नुकसान हो रहा है। बेमौसम बरसात ने जहाँ किसानों के खेतों में लगी सब्जियों को बर्बाद किया है, वहीं तेज आंधी से कई पेड़ उखड़कर गिर गए और कई कच्चे मकानों को भी नुकसान हुआ है। बिजली के कई खंभे गिर गए हैं जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अंधेरा छाया हुआ है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा।
0: अभी आप सुन रहे थे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

आकाशवाणी रांची का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। शाम के 7:15 हुए हैं श्रोताओं। प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।

0: बांग्ला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के ठीक 7:45 हुए हैं श्रोताओं। प्रस्तुत है खेल प्रेमी श्रोताओं के लिए कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज आपको धर्मेंद्र और
3: अनु गुप्ता का
2: एक बार फिर से नमस्कार। तो अनु, आज खेल तो बहुत सारे हैं, आज शुरुआत किससे की जाए?
3: धर्मेंद्र, मुझे ऐसा लगता है कि आज हमें शुरुआत बैडमिंटन से करनी चाहिए।
2: तो चलिए चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट पर और सुनते हैं ये रिपोर्ट। बाज जैसी पैनी नजर, चीते जैसी चपलता, भेड़िये जैसी चतुराई वाले रैकेट गेम बैडमिंटन का एक बड़ा टूर्नामेंट थाईलैंड ओपन 2026 इन दिनों चल रहा है। आज इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन है जो भारत के लिए अब तक मिला जुला रहा है। दिन की शुरुआत भारत के लिए काफी जोरदार रही जब मेंस डबल्स की दुनिया की दिग्गज जोड़ी और इस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने मलेशिया के मोहम्मद हाइकल और ब्रायन जर्मी गुटिंग को आसानी से शिकस्त दी। भारतीय जोड़ी ने बेहतरीन आपसी तालमेल और जबरदस्त नेट गेम के जरिए पहला गेम 21-12 से आसानी से जीत लिया। हालांकि दूसरे गेम में मलेशियाई जोड़ी ने पूरा दम लगाया और मुकाबले को काफी करीब बनाए रखा, लेकिन आखिरकार ये गेम भी भारतीय जोड़ी ने 21-19 से अपने नाम कर लिया। इस जीत से चिराग और सात्विक क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। मेन सिंगल्स में सातवीं सीड लक्ष्य सेन के दमदार खेल का जलवा भी विरोधी के सिर चढ़कर बोला। लक्ष्य ने इस मुकाबले में विरोधी को शुरू से अंत तक संभलने का मौका ही नहीं दिया। एक बार शिकंजा कसा तो अंत तक उसे ढीला नहीं छोड़ा। इसी का परिणाम था कि विरोधी चीन के जू एक्ससी ने आसानी से 21-12 21-13 के स्कोर पर घुटने टेक दिए। हालांकि अनुभवी किदांबी श्रीकांत दूसरे दौर की बाधा को पार नहीं कर सके। उन्होंने चीनी ताइपे के ली यांगशू के सामने कड़ी चुनौती तो रखी, लेकिन 1:10 तक चले मैराथन मैच में विश्व में 29वीं वरीयता वाले श्रीकांत को 49वीं विश्व रैंकिंग वाले यांगशू से 16-21 21-11 18-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी और राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गए। हालांकि महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने डेनमार्क की विश्व की 41वीं वरीयता प्राप्त एमली शुल्ज़ को 2 गेम में आसानी से 21-13 21-15 से हराया। टूर्नामेंट में छठी सीड और विश्व रैंकिंग में 12वें स्थान पर मौजूद सिंधु कल अपना अंतिम 8 का मैच खेलेंगी। उधर युवा देविका सिहाग प्री क्वार्टर फाइनल से आगे अपनी चुनौती नहीं ले जा सकी। अंतिम 16 के महिला सिंगल्स मैच में देविका को मेजबान देश की पिटचामोन ओपाथनीपुथ ने 23-21

0: 21-11 से शिकस्त दी। इस मैच में ऐसा लगा कि देविका ने पहले गेम में ही अपनी सारी ताकत झोंक दी। दूसरे गेम में उन्होंने आसानी से हार मान ली। महिला सिंगल्स में ही एक और भारतीय खिलाड़ी मालविका बंसोड अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। उनका मुकाबला टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता प्राप्त चीन की यूफी चेन से है, जिनकी विश्व रैंकिंग 4 है। मालविका के लिए प्री क्वार्टर फाइनल का यह मैच कठिन माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि कल शाम के सत्र में मिक्स डबल्स में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। अशित सूर्या और अमृता प्रमुथेश, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे के साथ साथ ध्रुव कपिला और तनिषा कैस्ट्रो को भी शिकस्त मिली थी। ईशा रानी बरुआ अपना महिला सिंगल्स मैच इंडोनेशिया की टीआर वीर्यवान से हार गई थी। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, यही बात पीवी सिंधु ने साबित की है थाईलैंड ओपन में, और ये बात साबित की है आईपीएल में विराट कोहली ने। शतक आया है विराट कोहली का, किस मैच में आइए सुनते हैं रिपोर्ट।
1: रायपुर से आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इस जीत के हीरो रहे विराट कोहली, जिन्होंने रन चेज में एक और मास्टर क्लास पेश करते हुए नाबाद 105 रन की धमाकेदार पारी खेली। ये कोहली का आईपीएल करियर का 9वां शतक रहा। इस जीत के बाद आरसीबी के 16 अंक हो गए हैं और बेहतर नेट रन रेट के आधार पर टीम अब अंक तालिका में नंबर 1 पर पहुंच गई है। वहीं केकेआर की ये हार उनके लिए बड़ा झटका साबित हुई है और अब प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए उन्हें लगातार जीत की जरूरत होगी। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। रायपुर की रोशनी में भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड ने शानदार स्विंग और लाइन लेंथ के साथ दबाव बनाया। फिन एलन ने 18 रन की तेज शुरुआत दी, लेकिन जल्दी आउट हो गए। कप्तान अजिंक्य रहा ने भी 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 48 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद केकेआर की पारी को संभाला युवा अंकरिश रघुवंशी ने। उन्होंने बेहद संयम और आक्रामकता के संतुलन के साथ 46 गेंदों पर 71 रन बनाए। रघुवंशी ने कैमरॉन ग्रीन के साथ 68 रन की अहम साझेदारी की और फिर रिंकू सिंह के साथ 76 रन जोड़े। रिंकू सिंह ने अंत में तूफानी अंदाज में नाबाद 49 रन बनाए, जिसमें 2 शानदार छक्के शामिल रहे। रसिक दार की कसी हुई गेंदबाजी के बावजूद केकेआर ने मजबूत स्कोर खड़ा करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बना दिए। 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते उतरी आरसीबी की शुरुआत भी थोड़ी डगमगाई, जब 4थे ओवर में कार्तिक त्यागी ने जैकब बेथल को आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद विराट कोहली पूरी तरह अलग ही लय में नजर आए। लगातार 2 मैचों में 0 पर आउट होने के बाद कोहली ने इस मुकाबले में पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए। कोहली और देवदत्त पडिक्कल के बीच 2 विकेट के लिए 59 गेंदों में 92 रन की शानदार साझेदारी हुई। पडिक्कल ने 39 रन बनाकर बेहतरीन सहयोग दिया। बाद में रजत पतिदर और टिम डेविड के विकेट जरूर गिरे, जिसमें मनीष पांडे ने एक जबरदस्त कैच लेकर मैच में रोमांच लाने की कोशिश की, लेकिन विराट कोहली क्रीज पर अडिग रहे। अंतिम ओवरों में कोहली ने गियर बदला। उन्होंने 32 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और फिर शतक की ओर तेजी से बढ़े। कोहली ने 60 गेंदों पर नाबाद 105 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल रहे। ये रन चेज की एक यादगार पारी रही। सुनील नारायण ने 1 विकेट लेकर 31 रनों की किफायती गेंदबाजी की और कार्तिक त्यागी ने 3 विकेट 32 रनों के शानदार आंकड़े हासिल किए। लेकिन विराट की पारी के सामने केकेआर का गेंदबाजी आक्रमण फीका पड़ गया। कोहली ने 19वें ओवर में अपना 9वां आईपीएल शतक पूरा किया और इसके साथ ही उन्होंने रन चेज भी सबसे ज्यादा शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। आखिर में जितेश शर्मा ने चौका लगाकर मैच समाप्त किया और आरसीबी ने 5 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर दिया। तो कुल मिलाकर विराट कोहली की सेंचुरी के दम पर आरसीबी ने केकेआर को 6 विकेट से हराकर आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया। आइए सुनते हैं मैच के बाद विराट कोहली क्या कहते हैं अपने प्रदर्शन के बारे में।
2: Yeah, look, for me, it's a conscious effort to try and contribute to the team's cause, and I know if I bat for long enough in the game, our chances of winning become higher. So the fact that I didn't get many runs in the last 2 games was, it eats me up in a way that I know I can play well and I'm hitting the ball well, but then when you don't carry on and, you know, you haven't created the impact for the team, it bothers you because that's basically been the goal all these years, trying to improve so that you can be the best version for your team when you play out there and make an impact. So, yeah, century or no century, I think the more important thing is finishing the game, making sure that I was out there till the end to get those 2 points, which, again, puts us at the top of the table.
0: इस जीत से आरसीबी टेबल टॉपर बन गई एक बार फिर से, लेकिन आज एक कड़ी परीक्षा होना है पंजाब किंग्स की, क्योंकि यह टीम शुरुआती चरण में काफी जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रही थी। क्या जबरदस्त जीत इनको मिल रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि टूर्नामेंट के बीच तक पहुंचते पहुंचते ये टीम पटरी से उतरने लगी है। आज बहुत अहम मुकाबला होना है उनका और टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए, प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उनके लिए जीत बहुत जरूरी है। बता रही है अनु गुप्ता इस मैच के बारे में।
1: लगातार चार हार झेलने के बाद पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने अहम आईपीएल 2026 मुकाबले में भारी दबाव के साथ उतर रही है। जब ये दोनों टीमें पिछली बार अप्रैल में आमने सामने हुई थी तब दोनों की स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस समय पीबीकेएस यानी कि पंजाब किंग्स ने 196 रन लक्ष्य 21 गेंदे शेष रहते ही आसानी से हासिल कर लिया था और मुंबई इंडियंस को लगातार चौथी हार का स्वाद चखाया था। उस समय पंजाब टूर्नामेंट में अजय थी और इस सीजन की सबसे मजबूत टीमों में से एक नजर आ रही थी। हालांकि उसके बाद से उनके अभियान में एक नाटकीय मोड़ आ गया। पंजाब की आक्रामक बल्लेबाजी लाइन अपने शुरुआत में गेंदबाजी और फील्डिंग की बड़ी कमियों को छिपाए रखा था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 210 रनों के विशाल स्कोर सहित बड़े लक्ष्यों का बचाव करने में बार बार मिली नाकामी ने उनकी कमजोरियों को उजागर कर दिया है। अब किंग्स पॉइंट टेबल में शीर्ष स्थान से खिसक कर चौथे स्थान पर आ गई है और प्लेऑफ की रेस उसके लिए कठिन होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर मुंबई इंडियंस भले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हो लेकिन यही बात उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना सकती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों आखिरी गेंद पर दिल तोड़ने वाली हार झेलने के बाद अब मुंबई इंडियंस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और वे धर्मशाला में पूरी आजादी के साथ खेल सकते हैं। पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल में अभी तक कुल 35 मैच खेले गए हैं जिसमें पंजाब ने 18 बार जीत दर्ज की और मुंबई ने 17 मुकाबले जीते। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हाल ही में हुए मुकाबले में इस्तेमाल की गई पिच पर गेंद का उछाल असमान था और उसमें काफी सीम मूवमेंट देखने को मिला। इसी वजह से दोनों टीमों ने पूरी तरह से तेज गेंदबाजी पर ही भरोसा किया और स्पिन गेंदबाजी का एक भी ओवर नहीं डाला गया। HPCA स्टेडियम में आज होने वाले मैच के लिए मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार बारिश का काफी ज्यादा खतरा है। इस देखते हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कांगड़ा घाटी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मैच के दिन से पहले धर्मशाला में भारी बारिश और तूफान आया था और शाम को मैच के समय भी बारिश होने की 55-60% आशंका बनी हुई है। आइए जाने संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। पंजाब किंग्स की तरफ से प्रियांश आर्य, प्रभ सिमरन सिंह विकेटकीपर के तौर पर, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर कप्तान के तौर पर, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, सूर्यांश शेडगे, मार्को जॉनसन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, यश ठाकुर और अर्शदीप सिंह रहेंगे। मुंबई इंडियंस की टीम की बात की जाए तो रयान रिकेल्टन विकेटकीपर के तौर पर, रोहित शर्मा, नमनधीर, सूर्य कुमार यादव कप्तान के तौर पर, तिलक वर्मा, विल जैक, राज अंगद बाबा, कार्बिन वॉश, दीपक चाहर, AM गजनफर, जसप्रीत बुमराह रहने की उम्मीद है।
0: तो अनु आपने कल के मैच का परिणाम और आज के मैच की संभावनाएं तो बता दे, लेकिन ये बताना भी बेहद जरूरी है कि पॉइंट टेबल में किस टीम की क्या स्थिति है। अभी आज तक अभी तक जो स्थिति है उसके अनुसार आरसीबी टेबल टॉपर है पहले स्थान पर 12 अंकों के साथ, नेट रन रेट +1.053, गुजरात टाइटंस

0: 14 अंक हैं। पंजाब किंग्स के 11 मैच के बाद 13 अंक हैं, वो चौथे स्थान पर है। 11 मैच के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के 12 अंक हैं। इसी तरह राजस्थान रॉयल्स, जो कि टूर्नामेंट की शुरुआत में काफी अच्छे लय में दिखाई दे रहा था, उसके 11 मैचों के बाद 12 अंक हैं। तो ये टीमें अभी प्लेऑफ में पहुंचने की सबसे तगड़ी दावेदार टीमों में से शामिल हैं। दिल्ली कैपिटल्स 12 मैच में 10 अंक लेकर 7वें स्थान पर, केकेआर 11 मैच में 9 अंक लेकर 8वें स्थान पर, मुंबई इंडियंस 11 मैच में 6 अंक लेकर 9वें स्थान पर है, और 10वें स्थान पर यानी अंतिम स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, 11 मैच में उसके 6 अंक हैं। तो यह है अभी अंक तालिका की स्थिति। और अब बात कर लेते हैं भारोत्तोलन की। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप गुजरात के गांधीनगर में चल रही है, वहां से भारत के लिए रोज कुछ न कुछ अच्छी खबर आ रही है।
1: गुजरात की राजधानी गांधीनगर से भारत के लिए अच्छी खबर है, जहां एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के 71 किलो वजन वर्ग में आज नारायण अजीत ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने स्नैच में 140 और क्लीन एंड जर्क में 174 किलोग्राम समेत कुल 314 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। हालांकि महिलाओं के 63 किलोग्राम वजन वर्ग से भारत के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं आई, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी निरुपमा देवी सेराम पदक से चूक गईं। वे चौथे स्थान पर रहीं, उन्होंने कुल 215 किलोग्राम वजन उठाया और चौथा स्थान हासिल किया। इस मुकाबले में उत्तर कोरिया की वेटलिफ्टर ने पहला स्थान और चीन की दो वेटलिफ्टर ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। पुरुषों के 79 किलोग्राम वजन वर्ग में देवराथ भराली आज अपनी चुनौती पेश करेंगे। इससे पहले कल भारत की बिंदिया रानी देवी उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर सकी और महिलाओं के 58 किलोग्राम वर्ग में कुल 203 किलोग्राम भार उठाकर 5वें स्थान पर रही। 3 साल पहले महाद्वीपीय प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता बिंदिया रानी ने स्नैच में 89 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 114 किलोग्राम भार उठाया था। स्नैच में उन्होंने 85 किलोग्राम और 89 किलोग्राम सफलतापूर्वक उठाए, लेकिन अपने अंतिम प्रयास में 91 किलोग्राम उठाने में नाकाम रही। क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 114 किलोग्राम से शुरुआत की और फिर 118 किलोग्राम के दो प्रयास में असफल रही। इस वर्ग का स्वर्ण उत्तर कोरिया की ग्योंग किम ने कुल 230 किलोग्राम वजन उठाकर जीता। रजत चीन की तिग्ना वेई को 225 किलोग्राम वजन उठाकर मिला। वियतनाम की थी ताम ओ आना ने कुल 221 किलोग्राम वेट लिफ्ट कर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। इससे पहले ज्ञानेश्वरी ने भारत के लिए कल 2 पदक जीते थे। स्नैच में उनको रजत मिला था और कुल जो वजन उन्होंने उठाया उसके बाद उनको कांस्य पदक मिला। अपनी सफलता पर ज्ञानेश्वरी ने कहा,
2: मैं ये परफॉर्मेंस को मतलब कि देखा है कि पिछले साल से मैं इसके लिए मैनिफेस्ट करूंगी कि यहाँ पे एशियन होना है, मुझे खेलना है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। उस हिसाब से मैंने अपना जितना भी ट्रेनिंग में किया है, मैं यहाँ पे आके अपना पर्सनल, तो उस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ।
3: जो कंपटीशन था ज्ञानेश्वरी, वो कैसा था? और आपने तो अपने इसमें 2 मेडल जीते, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, ओवरऑल ब्रॉन्ज जीता है, वो दोनों उनके बारे में आप बताएं।
2: जी, मैंने स्नैच में 88 स्नैच किया है और उसके थ्रू ही मुझे सिल्वर मेडल मिला है स्नैच में, और क्लीन एंड जर्क में 106 किया है। सेकंड वाला जो लिफ्ट था मेरा, वो प्रेस आउट दे दिया था तो उसके कारण नो लिफ्ट हुआ था, और ऑल ओवर में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है और मैं इस परफॉर्मेंस से खुश हूँ और आगे और मेहनत करना चाहती हूँ।
3: जी, तो जो कंपटीशन था यहाँ पे, क्योंकि एशियन कंट्रीज के टॉप जो वेटलिफ्टर थे वो यहाँ पहुंचे हुए थे, कैसा आपको कंपटीशन मिला?
2: कंपटीशन तो बहुत टफ था, क्योंकि मैंने ये सब प्लेयर को कई सारे कंपटीशन ओलंपिक में और एशियन गेम्स में, ये सबको मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में टीवी में या फिर फोन में मैंने देखा है सबको लिफ्ट करते हुए। तो एक साइड से उनके साथ में कम्पीट करना एक्साइटमेंट भी था और थोड़ा नर्वसनेस भी था, बट मेरे साइड से ये था कि मुझे सिर्फ अपना पर्सनल बेस्ट करना है।
3: तो ऐसे कंडीशन में जब इतने बड़े बड़े वेटलिफ्टर्स को, जिसको आपने टीवी पर देखा था, फोन पर देखा था, अपने सामने देखा, आपके ऊपर कैसा मेंटल प्रेशर था?
2: सर, मेंटल प्रेशर तो नहीं था, मतलब कि मुझे बस अपना परफॉर्मेंस बीट करना था, मुझे बस इतना ही था कि मैंने जो अपना प्रीवियस परफॉर्मेंस करके आई हूँ वर्ल्ड कप में, या तो मैं उसको मेंटेन करूँ या मैं उससे 1 kg भी इम्प्रूव करती हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा बात होगा, क्योंकि मैंने अभी 10 दिन में ही ट्रेनिंग करके ये परफॉर्मेंस किया है। इसलिए
3: ज्ञानेश्वरी, यहाँ क्या कुछ ऐसा आपको

0: वो सीखने को मिला जो आपको भविष्य में मदद करेगी?
1: यहाँ में मैं बहुत मेरे से एलीट लेवल प्लेयर्स को देख रही हूँ, तो मतलब उनसे इंस्पायर्ड भी हो रही हूँ, क्योंकि मैं तो अभी सिर्फ स्टार्टिंग स्टेज है मेरा आगे जाने का, और वो तो मतलब हाई लेवल के है, तो देख के ऐसा लगता है कि हाँ वो इतना स्मूथली लिफ्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग बेसिस हो या चाहे किसी भी चीज में हो, तो उनको देख के एक सीखने मिलता है कि हमको भी अच्छा करना चाहिए।
0: यहाँ के ब्रॉन्ज के बाद आगे आपका क्या टारगेट है ज्ञानेश्वरी?
1: सर आगे का तो टारगेट अभी कॉमनवेल्थ गेम्स है, मैं उसके लिए प्रिपेयर करना चाहूंगी अपने आप।
0: जी कैसे तैयारी होगी कॉमनवेल्थ गेम्स की, क्योंकि यहाँ से ज्यादा वहाँ पर कठिन मुकाबले हो सकते हैं?
1: जी और अपने आप पे ध्यान दूंगी, कहाँ पे क्या कमी है, रिकवरी है या टेक्निक है, वो सब पे फोकस करते हुए मैं अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहूंगी।
0: कितनी मेहनत करेंगी, क्योंकि देश को आपसे ब्रॉन्ज नहीं गोल्ड मेडल चाहिए, उसके लिए क्या कुछ रूटीन रहेगा, क्या कुछ और आप ज्यादा मेहनत करेंगी?
1: सर वही है कि अपने आप को पूरा झोंक देना ही मेरा काम है, फिर फॉर्म करना, अपना पर्सनल बेस्ट करना, वो मेरे लिए सबसे पहला मेन टारगेट है, क्योंकि अगर मैं चाहूंगी कि मैं इतना उठा लूं, वो चीज तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही हम पकड़ सकते हैं, तो इसीलिए मैं अपने आप को और प्रैक्टिस में लीन करके अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहूंगी।
2: और अब चलते हैं एशियन अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप की तरफ, जहां पर भारत के लिए पदकों की झड़ी लगी है और खासतौर पर बहुत सारे गोल्ड मेडल आए हैं। बताइए अनु,
3: यदि हम बालक वर्ग में बात करें तो यश कुमार ने 33 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। मोहम्मद यासर ने 58 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं सिल्वर मेडल पर कब्जा किया 37 किलोग्राम भार वर्ग में सस्ता वसंत अशोक कुमार ने, 43 किलोग्राम भार वर्ग में समीर बोहरा ने, 52 किलोग्राम भार वर्ग में सुदर्शन वसुदेव चंदाक ने और 67 किलोग्राम भार वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने हासिल किया। ताशकंद में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने इस शानदार प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि देश की नई पीढ़ी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रही है। वहीं यदि रजत पदक की बात की जाए तो लड़कियों के कैटेगरी में जिया ने 35 किलोग्राम भार वर्ग, खुशी राणा ने 49 किलोग्राम भार वर्ग, कनिष्का ने 52 किलोग्राम भार वर्ग, अश्वी ने 67 किलोग्राम भार वर्ग और मानवी ने 70 से ज्यादा किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। लड़कों ने 35 किलोग्राम भार वर्ग में रोहित पोथीना, 40 किलोग्राम भार वर्ग में नितिन, 46 किलोग्राम भार वर्ग में नोनगोप गांगा मेते ने, 49 किलोग्राम भार वर्ग में प्रशांत, 55 किलोग्राम भार वर्ग में हर्षवर्धन जीना और 64 किलोग्राम भार वर्ग में देव ने, साथ ही 70 से ज्यादा किलोग्राम भार वर्ग में सुशांत जैनी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए।

आइए चलें रेसलिंग यानी कि कुश्ती की तरफ, जहां भारतीय कुश्ती महासंघ ने महिला कुश्ती के अंतिम रैंकिंग की घोषणा कर दी है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने नंदनी नगर महाविद्यालय गोंडा में आयोजित सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट 2026 में महिला कुश्ती स्पर्धाओं का समापन किया। महिला कुश्ती वर्ग में 10 निर्धारित भार वर्गों में एथलीटों ने अपनी घरेलू रैंकिंग तय करने के लिए मुकाबला किया। आइए जाने महिला कुश्ती टूर्नामेंट के अंतिम परिणाम। 50 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में गोल्ड अंकुश के नाम हुआ, सिल्वर रचना, ब्रॉन्ज परवीन और ईशिका के नाम। 53 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में गोल्ड निशु ने जीता, वहीं सिल्वर हिमांशी और ब्रॉन्ज तनु और तानिया के नाम हुआ। 55 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में गोल्ड निशा ने जीता, सिल्वर नैना और ब्रॉन्ज तनिष्का और खुशी ने। 57 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में गोल्ड रीना ने जीता है और सिल्वर काजल चौधरी, ब्रॉन्ज शिवानी और हंसिका लांबा ने। 59 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में गोल्ड सीतो के नाम हुआ, सिल्वर सिमरन, ब्रॉन्ज खुशी चौधरी और पूजा गहलोत के नाम। वहीं 62 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में गोल्ड वैष्णवी दिलीप पाटिल के नाम हुआ, सिल्वर अंजलि को मिला और ब्रॉन्ज सारिका मलिक और प्रगति विनोद गायकवाड़ को मिला। 65 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में गोल्ड अंजलि ने जीता, सिल्वर दिशुन और ब्रॉन्ज जानवी और कल्पना के नाम। 68 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में गोल्ड अंशु राजकुमार, सिल्वर भतेरी ने जीता और ब्रॉन्ज कोमल और खुशी के नाम हुआ। 72 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में गोल्ड बिपाशा, सिल्वर रिया कौशिक और ब्रॉन्ज तनु शर्मा और किरण हुड्डा ने जीता। वहीं आखिरी यानी 76 किलोग्राम महिला कुश्ती वर्ग में गोल्ड इतिशा चौधरी ने जीता, सिल्वर पूजा ने और ब्रॉन्ज मेघना और शिक्षा ने।

बात हॉकी की, फ्रांस के फ्रेडरिक सोएज को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया है, जो दो बार के ओलंपिक विजेता पीआर श्रीजेश की जगह लेंगे। पूर्व स्टार गोलकीपर श्रीजेश का अनुबंध पिछले साल चेन्नई और मदुरई में एफआईएफ जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक जीतने के बाद खत्म हो गया था। हॉकी इंडिया ने उनके अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया। चलते हैं अब एथलेटिक्स की तरफ। 28 मई से 31 मई तक हांगकांग में आयोजित होने वाली एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के प्रतिभाशाली लॉन्ग जंपर शहनवाज खान को 48 सदस्यीय

0: राष्ट्रीय ट्रैक एंड फील्ड टीम में शामिल किया गया। टीम का चयन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने घरेलू प्रतियोगिताओं में एथलीट्स के प्रदर्शन के आधार पर किया है। शहनवाज खान ने हाल ही में 24वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप में 8.23 मीटर का शानदार प्रदर्शन किया था, जो नेशनल अंडर 20 में लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड है। मोहम्मद अशफाक 400 मीटर और रिले, नितिन गुप्ता 5000 मीटर रेस वॉक और पूजा हाई जंप में भाग लेंगी। इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता के लिए नेशनल टीम में शामिल किए गए अन्य एथलीटों की बात करें तो 50 सदस्यों वाली भारतीय टीम में पुरुष वर्ग में रुद्र सचिन शिंदे 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले, मोहम्मद अशफाक 400 मीटर दौड़ और 4x400 मीटर रिले और मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, पीयूष राज 400 मीटर 4x400 मीटर रिले मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, वेंकटराम रेड्डी मोगली 800 मीटर दौड़, संदीप यादव विकास कुमार 3000 मीटर दौड़, निखिल सिंह 3000 मीटर स्टीपल चेज, किरण कुंचन 110 मीटर बाधा दौड़, जशन प्रीत सिंह की बात करें और अमित कुमार की बात करें तो 400 मीटर बाधा दौड़ में शामिल होंगे। नितिन गुप्ता तुषार कंवर 5000 मीटर रेस वॉक में शामिल होंगे, बसंत ऊंची कूद में हिस्सा लेंगे। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे खेल खिलाड़ी कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मुझे यानी धर्मेंद्र और
1: अनु को इजाजत दीजिए।
0: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: खेल खिलाड़ी, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। श्रोताओं सुनिए एक आवश्यक सूचना। नीतीश कुमार सिंह, उपायुक्त सरायकेला खरसावां, समस्त जिलेवासियों से अनुरोध करते हैं कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना यानी कि सेल्फ इन्यूमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से se.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। ये पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता ही प्राथमिकता है। जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए अपनी जिम्मेवारी निभाने की अब आपकी बारी है। सूचना समाप्त हुई।

सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

आनंद बख्शी ने लिखा था इस गीत को, संगीत तैयार किया था उत्तम सिंह ने, फिल्म थी दुश्मन और आवाजें थी लता मंगेशकर और उदित नारायण की। आइए श्रोताओं, अब इन्हीं आवाजों का ये अंदाज सुनते हैं।

0: लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में ये गीत आपने सुना आनंद बख्शी का लिखा हुआ, संगीत उत्तम सिंह का था और फिल्म थी दिल तो पागल है। आकाशवाणी जमशेदपुर से श्रोता हूँ, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के बाकी गाने लेकर हम अभी हाजिर होते हैं, बने रहिए आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ FM 102.4 MHz पर।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: डॉक्टर,
3: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
2: हेलो डॉक्टर,
3: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
2: हेलो डॉक्टर,
0: हाजिर हैं हम श्रोताओं फिल्म संगीत कार्यक्रम के बाकी गानों के साथ।

0: मोहब्बत इस फिल्म का ये गाना था। श्रोताओं, अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें थी, बोलते समीर के और म्यूजिक था नदीम श्रवण का। और श्रोताओं, इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है। अगला प्रसारण होगा दिल्ली केंद्र से, समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले

0: ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे

0: निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री

0: स्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9.

0: Countrywide.
1: नमस्कार, कार्यक्रम कंट्रीवाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मौसम विभाग ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है। इस पर हमारे साथ है डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर शेष कुमार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे इसी विषय पर कि मौसम विभाग ने पहली बार ये प्रणाली शुरू की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली। तो पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान की जो प्रणालियां हुआ करती थी उनकी तुलना में ये नई प्रणाली हमारे लिए कितनी बड़ी पहल है?
2: मैं पहले थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, भारत जो मौसम विभाग है पहले भी ऑनसेट ऑफ मानसून केरला के ऊपर देता था। उससे पहले जो लंबी अवधि की जो मानसून जो फोरकास्ट देता है, जैसे अप्रैल सेकेंड वीक में देता, अभी इसी साल दिया है अप्रैल 13 तारीख, उसमें बताया गया कि इस बार जो बारिश है पूरे देश में जो सामान्य से नीचे होगा, और फिर इसी का अपडेटेड हम देते हैं मई लास्ट वीक में, तो उसमें बताया जाता है कि इसका अपडेटेड वर्जन देता है कि अभी देश में कितना बारिश होगा, इसी का अपडेटेड। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देते हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून कौन से दिन होने वाले केरला में, ये हर साल हम देते थे। इस साल हमने क्या किया है, और एक AI बेस्ड एक मॉडल लाया है जो ब्लेंडेड अप्रोच हम इसको कहते हैं। इसमें जो IMD का डेटा लेके फिर इसको दो मॉडल जो प्रोसेस है उसको ब्लेंड करके, उसको IFS कहते हैं, IITM का ERF कहते हैं, तो इसके साथ स्टैटिस्टिकल मॉडल लेके इसको ब्लेंड किया गया है, और उसका जो मेन एब्सोल्यूट एरर हम कहते हैं प्लस और माइनस 4 दिन है। उसमें मोस्ट जो वाइडली यूज दो क्राइटेरिया हमने यूज किया है, जो फर्स्ट डे ऑफ 5 डे वेट स्पेल, और सेकेंड ये है कि 5 डे वेट स्पेल है उसके बाद सब्सिक्वेंटली ड्राई स्पेल नहीं होना चाहिए 10 डेज, ये पूरा 30 दिन में इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए है, और AI बेस ये मॉडल हमने डेवलप किया है। अभी फिलहाल हमने इसको देंगे 3196 जो ब्लॉक्स है इंडिया में, ये करता है कि 15 स्टेट और 1 UT में, और उसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो ब्लॉक थे भी हम डेवलप करेंगे इसको। रिसेंटली इस प्रोडक्ट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह जी और हमारे सेक्रेटरी DG मिलकर इसको लॉन्च किया गया प्रोडक्ट। ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है, और इसके साथ

0: भी अलग सेक्टर्स भी है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इसके लिए महत्वपूर्ण कहता है। इसलिए है कि जो किसानों को लैंड प्रिपरेशन हो, सीड परचेज करना हो, और इसका जो स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लेना हो, लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप्स लेना हो, ये प्रॉपरली वो प्लान कर सकते। इस फोरकास्ट को हम प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट हम कहते हैं। इसको 4 हफ्ते पहले हम देते ताकि उनको काफी टाइम मिले प्रिपरेशन करें। पहले हम प्रोग्रेस देते थे हर दिन, बट ये ब्लॉक स्पेसिफिक होगा। हर ब्लॉक में आपका ब्लॉक में ऑनसेट कब होगी बारिश, इसके हिसाब से जितने भी ब्लॉक में किसान है वो अपना प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं।
1: वैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये जो 4-in-1 प्रणाली तैयार की जा रही है, इनमें स्वदेशी तकनीक की किस तरह की भूमिका है, खासतौर जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं या और भी इस तरह के जो उपकरण होते हैं, तो ये कितने हमारे लिए फायदेमंद है या कितने विश्वसनीय होते हैं हमारे लिए?
0: इसमें जो बेसिक डेटा यूज किया है कि IMD का डेटा है, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा है, ऑलरेडी हमारा सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे आपका ARG ऑटोमेटिक रेन गॉज है, और उसके AWS ऑटोमेटिक रेन गॉज है, उसमें रडार भी है, उसमें सैटेलाइट डेटा भी है, इसको हम पहले तैयार किए। उसके बाद 3 जो प्रोसेसेस है, जैसे मैंने बताया AIFS है, देन IITF का जो ERP है, देन स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसको ब्लेंड किया हमने। उसके बाद AI जो मॉडल्स है इसको यूज करके फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाले हैं इस ब्लॉक में कब ये ऑनसेट होगी। इसमें पूरा इंडिया का भी रोल है, जो बेसिक डेटा जा रहा है और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो इंडिया का डेटा है, और जो मॉडल्स बनाए IITM है, जो MOES का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस को प्रणाली को तैयार किया है, और इसका डिसिमिनेशन भी किसानों तक पहुंचेगी। अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है इसको किसानों तक पहुंचाने के काम करेंगे।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के 3,196 से अधिक उप जिलों तक इस तरह की प्रणालियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोई संदेह नहीं कि इसे करने में काफी सारी मेहनत भी लगी होगी, कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे।
0: एक्चुअली जो पूरे इंडिया का डेटा है, हम इनिशियली इस रीजन को इसलिए कन्फाइन किया, हमारे पास एक बहुत डेंस डेटा है, सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा हो जो वैलिडेशन के लिए हमें चाहिए, और बाकी रीजन के लिए भी हम करेंगे। अभी इस बार जो किया है इसको हम टेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट ये है कि इसका डिसेमिनेशन पार्ट है, हम ऑलरेडी इसका डेटा आ गया, इसको किसानों तक कैसे पहुंचाना वो एक काम है। हम अलग अलग मिनिस्ट्रियों के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और IMD अपना एक टीम है जो किसानों तक कनेक्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज से भी हम कनेक्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से भी हम कनेक्ट करेंगे, जिसका देशों में नेटवर्क है, जैसे कृषि सखी पशु सखी का नेटवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का नेटवर्क है, जिसका हमने उसी के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया पंचायत मौसम सेवा, उसके थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारा एम है कि सब किसानों को पहुंचना चाहिए ताकि उनको काफी टाइम मिले प्लानिंग करने के लिए।
1: यानी ये कह सकते हैं कि किसानों को ध्यान में रख करके फार्मर ओरिएंटेड चीजों को डेवलप करने पर काम हो रहा है, किसानों की अधिक से अधिक मदद की जा सके ताकि वो अपनी फसल को बेहतर कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
0: ऑलरेडी IMD और बहुत स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे ICR सेंटर्स हैं, और बहुत IITs के साथ मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम देते हैं, जहाँ पे IMD वेदर फोरकास्ट देते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और उसके साथ साथ एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे एक कॉम्प्रेंसिव एडवाइजरी बनाते हैं हर क्रॉप के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, पॉलिटिक के लिए, फिशरी के भी, कि अगले 7 दिनों में आपका क्या मौसम रहेगा, उसके हिसाब से आपका क्रॉप को क्या इम्पैक्ट होगी, उसका आपको एडवाइजरी क्या आपको एक्शन लेनी है। उसके साथ साथ इनके ऑनसेट भी हम देंगे, जो उनका प्रोबेबिलिटी की जो ऑनसेट डेट है नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए, उनको काफी मदद मिलेगा, और ये प्रॉपर प्लान भी करेगा, और इनके क्रॉप में तो नुकसान भी कम होगा इसका।
1: डॉक्टर शेष, अभी जो हमारी बात हुई इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर वर्षा पूर्वानुमान की पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, तो इसे पूरे देश में लागू करने की भी योजना है?
0: अभी हम दूसरा प्रोडक्ट है जो माननीय मंत्री जी है जितेंद्र सिंह जी कल लॉन्च किया है, ये 1 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन का रेनफॉल प्रोडक्ट है, अभी हमने उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बनाए गए हैं। इसलिए है कि वहाँ पे एक विंस प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उन्होंने काफी ERG है AWS इंस्टॉल किया है, काफी इन्फॉर्मेशन अभी ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है। उसके साथ साथ हमने रडार डेटा भी यूज किया है, AWS डेटा भी यूज किया है, यूज करके एक मॉडल ऑलरेडी हमारा ग्लोबल मॉडल है जो फोरकास्ट देता है 12.5 किलोमीटर, और एक रीजनल जो मॉडल है जो INCMRW का है, उसके पास 3 से लेकर 4 किलोमीटर का जो स्पेशल रेजोल्यूशन पे हर घंटे में अपडेट होता है। इसी को हम AI जो मॉडल्स है उसको यूज करके हम लोग डाउन स्केलिंग किया, 12 किलोमीटर को 4 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर को फिर 1 किलोमीटर किया, ये हर घंटे में अपडेट होता है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। एक बार रन किया तो 240 आवर्स के लिए जो रन होता है जो नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ये एग्रीकल्चर के अलावा भी बाकी सेक्टरों के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे एविएशन सेक्टर के लिए ये मदद होगा। और ये जो प्रोग्राम है अब इनिशियली हम इसको पायलट सर्विस हम कह रहे हैं, बाकी देशों में भी हमने इसको शुरू किया काम करने के लिए। ये एक बार हो सकता है कि

0: ग्रेजुअली हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हर एक साल के लिए, और ये हम साथ साथ इसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, वैलिडेशन भी कर रहे हैं, जो वहाँ पे AWS डेटा, ERZ डेटा, जो इंस्ट्रूमेंट से जो डेटा आता है उसके साथ साथ कंपेयर करके इसका एरर भी बताते हैं कि एक्यूरेट कितना है प्रोडक्ट, उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसको API के थ्रू भेज भी रहा है। जो ये दोनों प्रोडक्ट है जो कल लॉन्च किया है, ये हम लोग API के थ्रू सभी एजेंसीज को जो रेनफॉल या वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको ऑलरेडी शेयर करना हमने शुरू कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए काम करता है और उसका साथ साथ भी MNC है जो यील्ड फोरकास्ट करता है, उनके लिए उनका मॉडल के लिए बहुत जरूरी है जो रेनफॉल डेटा वेदर डेटा है, वो हर फार्म लेवल का भी क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन करना चाहते हैं, उसके लिए ये हाई रेजोल्यूशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है।
1: डॉक्टर शेष, अभी अपने ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया तो ट्रांसपोर्टेशन की बात आती तो भारत जैसा देश जहां पर कृषि भी बड़े पैमाने पर होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, एविएशन की हम बात करें या फिर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी इस तरह के फोरकास्ट की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे UP में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ स्पेसिफिक इनके लिए भी किया जा रहा है?
0: जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो हम रेनफॉल के दे रहे हैं, इसके अलावा भी ऑलरेडी IMD सभी सेक्टर्स के लिए सर्विसेज दे रहा है, जैसे इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एविएशन हो गया, ऐसे कोई सेक्टर है जो IMD वेदर फोरकास्ट नहीं देता। हम देखे तो जो नौकास्ट हम कहते हैं अगले 3 घंटे में फोरकास्ट देते हैं हम लोग, और मीडियम रेंज जो शॉर्ट रेंज कहते हैं नेक्स्ट 3 दिन में वेदर फोरकास्ट देते हैं, और नेक्स्ट मीडियम रेंज नेक्स्ट 7 दिन के लिए, और उसके बाद एक ERFS होते हैं एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जो अगला 15 दिन में, उसके बाद हर महीने का भी देते हैं और 4 महीने का भी देते हैं, उसको हम कहते हैं सीमलेस वेदर फोरकास्ट सिस्टम फॉर इंडिया। तो इसमें हर तरीके से फोरकास्ट है, इसको हर सेक्टर्स को हम देते हैं, वो ऑलरेडी हम API के थ्रू दे रहे हैं, उनका सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट भी किया, इनकेस उनका पोर्टल्स भी है, उस पोर्टल के साथ भी हम इंटीग्रेट किया, उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड हम पोर्टल्स भी बनाए कि ताकि वहां से डायरेक्टली एक्सेस करें लोग, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करें।
1: किसानों के बारे में अगर मैं मौसम विभाग के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं तो अभी हाल के दिनों में काफी बदलाव देखने को मिले हैं पिछले 1 दशक के मुकाबले, तो प्रेजेंट टाइम में क्या खास है किसानों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जिसका वो अधिकतम लाभ उठा सकें?
0: जैसे मैं कहा कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ICR सेंटर्स है, IITs है, काफी इम्पैक्ट जो NGOs भी है उनके साथ कोलैबोरेशन करके IMD एक स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको कहते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जो रूरल एग्रीकल्चर से है उसी के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम बनाया गया है। इसमें बहुत सारे देशों में बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, स्टेट इंस्टीट्यूट सब इन्वॉल्व है, इसमें हम लोग वेदर फोरकास्ट देते हैं अगले 7 दिन के लिए और ये हर दिन जाता है, और इसी मौसम का आधारित एडवाइजरी भी देता है कि आपका अगले 7 दिन में कैसे मौसम रहेगा, और इनकेस इस तरह मौसम है तो क्या नुकसान होगे, और उस नुकसान को बचाव करने के लिए आपको क्या क्या करनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। ये हमारा एक नेटवर्क है, उसको हम कहते हैं कि 130 नेटवर्क बनाया है, 130 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क बनाया है, हमारे जो मौसम विभाग से फोरकास्ट उनको जाता है, वहाँ के जो साइंटिस्ट बैठे हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो एंटोमोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, एग्रोनॉमिस्ट है, वो क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव बुलेटिन बनाता है, उस बुलेटिन को वेदर इन्फॉर्मेशन के साथ हम डिसिमिनेट करते हैं, और डिसिमिनेट करने के लिए भी बहुत सारे कोलैबोरेशन हमने किए हैं, जैसे पंचायत मौसम सेवा, वो वहाँ पे हर पंचायत मेंबर को व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली जाता है, और वो पंचायत जो सरपंच है, वार्ड मेंबर या सेक्रेटरी है, फिर वो उनका गांव का जो लोग है जो किसान उनको फर्दर डिसिमिनेट करते हैं। और रिसेंटली फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन किए, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क है जो पशु सखी है, कृषि सखी है, जो उनका नेटवर्क हम फोरकास्ट उनको देते हैं, वो फर्दर वहाँ पे कृषि सखी फसल के फिर उसका गांव में जो डिसिमिनेट करते हैं। लगभग अभी आप देखेंगे तो हर बार 4 करोड़ के आसपास किसानों को इस वेदर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया था कितना इससे आपको लाभ मिल रहा है, फीडबैक भी हम कलेक्ट करते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट इन केस कोई भी किसान है जो रेनफेड रीजन में है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वेदर इन्फॉर्मेशन या इस एडवाइजर को यूज करेंगे तो उनको लगभग 12,500 का एडिशनल इनकम मिल जाती है। तो इसी को पूरे इंडिया में जहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर है, जिसका KT है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो लेस देन 2 हेक्टेयर है, वो इन केस इम्प्लीमेंट करे लगभग देश में 13,500 करोड़ जो बचा सकते हैं या एडिशनल इनकम हम कर सकते हैं इस एडवाइजरी के या वेदर इन्फॉर्मेशन के थ्रू।
1: डॉक्टर शेष, बहुत ही ग्राउंड लेवल का सवाल है ये, एक आम किसान अगर इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है तो उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसे किस तरह के प्रयास करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए कि उस तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे?
0: जैसे मैंने बोला, कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे हमने स्टेट एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन की है, हम लोग फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स है तो हर जिले में जाके फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जाते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, और हर न्यूज़पेपर में भी देते हैं और रेडियो में भी पार्टिसिपेट करते हैं कि मौसम का जानकारी के लिए और एडवाइजरी भी क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। किसानों को उसमें जोड़ के रहना पड़ेगा कि आज का वेदर फोरकास्ट क्या है, और फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और हमारे एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्स भी हैं जो रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, इनकेस कोई पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज में हम वेदर फोरकास्ट देते हैं, और एडवाइजरी भी उसी लैंग्वेज में होता है। वो एक मेघदूत ऐप है और एक मौसम ऐप है, और इसके अलावा भी एक दामिनी ऐप है जिसमें लाइटनिंग इन्फॉर्मेशन आता है। तो इसके अलावा भी किसान बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल है वहाँ पे, थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग है, वहाँ पे भी जाते हैं, उसमें भी नुकसान होने का बहुत चांसेस रहता है। उस केस में जो दामिनी का इन्फॉर्मेशन मौसम ऐप में भी इन्फॉर्मेशन, उसको देखनी चाहिए, ओरिजिनल लैंग्वेज में है, और अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा भी हर स्टेट में मौसम विभाग का एक ऑफिस है, तो उस ऑफिस के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहिए, उस ऑफिस वाले भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसके वजह से हर किसान को लाभ मिल सकता है, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल सकता है।
1: डॉक्टर शेष, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। जलवायु परिवर्तन के कारण अभी मौसम की अनिश्चितता काफी बढ़ रही, जैसा कि हम अभी हाल में ही देख रहे हैं, तो ऐसे में जो चुनौतियां मौसम विभाग के सामने आ रही हैं, उनको टैकल करने के लिए या उनसे आगे बढ़ने के लिए, या फिर इस तरह की चुनौतियों के बाद भी मौसम का फोरकास्ट करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है?
0: इसी के हिसाब से रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी एक स्कीम लॉन्च किया था, हम मिशन मौसम कहते हैं। इस मिशन मौसम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक आपने रेडार देख लीजिए और आपका AWS देख लीजिए, एक एग्रीकल्चर स्पेसिफिक एग्रो AWS कह रहे हैं, उसका नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, और सैटेलाइट की भी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसके हिसाब से इसका जो इनपुट्स जाता है मॉडल्स में, उसको भी मॉडल्स को भी हम रोबोस्ट बना रहे हैं, ताकि एक विद एक्यूरेसी एक वेदर इन्फॉर्मेशन को वो फोरकास्ट करे, प्रिडिक्ट करे। फर्दर इसको हम जानकारी जो रिलेटेड सेक्टर को हम प्रोवाइड करें।
1: डॉक्टर शेष, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कंट्री वाइड, जिसमें हमने बात की पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली पर, जिसमें हमने चर्चा की डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी से, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड।

मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। कश्मीर की कली फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। शब्दकार थे SH बिहारी, संगीतकार OP नैयर। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और सुनते हैं ये गाना।

आरोप इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के थे। गीत रचना की थी माया गोविंद ने और धुन थी भूपेन हजारिका की।

शब्द रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की थी, और फिल्म थी धरती कहे पुकार के। आकाशवाणी जमशेदपुर से श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्मी गाने।

आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की थी, फिल्म थी मस्ताना। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और सुनते हैं ये गीत।

आरती मुखर्जी और किशोर कुमार के युगल स्वरों में तपस्या फिल्म का यह गाना था। श्रोताओं, गीतकार थे एमजे हसमत और संगीत रविंद्र जैन का था।

लता मंगेशकर की आवाज में सौदागर फिल्म का यह गाना आप सुन रहे थे श्रोताओं। गीत संगीत था रविंद्र जैन का। और श्रोताओं, इसके साथ ही फिल्म संगीत का आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अनुमति दीजिए, नमस्कार। फिल्म संगीत ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के ठीक 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए वायलिन वादन, राग है किरवानी, कलाकार हैं पंडित VG जोग। तो आइए सुनते हैं राग किरवानी में पंडित VG जोग का वायलिन वादन।

0: शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग केरवानी में पंडित वीजी जोग का वायलिन वादन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी दिल्ली से, समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के 3rd चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच